FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार।
3: चंद दिनों में कई पहाड़ी मुकामों पर मुझे जाना हुआ। आप शायद जानते हो कि मुझे पहाड़ आमतौर से पसंद हैं और हिमालय पहाड़ से तो कुछ बचपन से ख़ास रिश्ता रहा। तो यहाँ आकर मुझे खुशी हुई फिर से इन पहाड़ों में आकर, और इनको देखकर मेरे सामने कुछ लंबे ज़माने आने लगते हैं आँखों के सामने, गुज़रे हुए ज़माने और कुछ आने वाले ज़माने। इनकलाब जिसका नाम आप बहुत लेते हैं और नारे उठाते हैं, इनकलाब से ताल्लुक हुल्लड़बाजी और मारपीट नहीं है। इनकलाब वो चीज़ है जो दुनिया को पलटती है, जो समाज का रहन सहन बदलती है बुनियादी तौर से। और वो बातें होती हैं जब कोई नई ताकतें दुनिया में आए। आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत आई है जो कि हल्के हल्के दुनिया को पलटेगी। वो ताकत एटॉमिक एनर्जी है, अणु शक्ति है, जो कि यकीनन 10, 20, 25, 30 बरस में बहुत दुनिया को उलट पलट करेगी, अगर उसने उसके कबल दुनिया का खात्मा नहीं कर दिया। क्योंकि दोनों बातें हो सकती हैं। ये ज़बरदस्त ताकत जो आई दुनिया में, ताकत ताकत होती है, उसका अच्छा इस्तेमाल हो या बुरा, गलत इस्तेमाल हो तो इतनी बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि सारी दुनिया को ख़त्म कर दे। अगर कोई बड़ी जंग हो और ख़त्म करे महज अपने वार से नहीं, बल्कि ख़त्म करे हवा को ऐसे बिगाड़ के कि जहाँ जहाँ वो हवा जाए वहाँ मुल्क ख़त्म हो जाए, रेडियो एक्टिविटी फैले। एक तरफ से यह है, दूसरे तरफ से ये बात है कि इस बड़ी भारी ताकत से दुनिया फ़ायदा उठाए और अक्सर मसलों को दुनिया के हल कर दे। ये तो नहीं मैं कहता कि एटॉमिक एनर्जी से सब दुनिया के मसले हल हो जाएंगे। दुनिया के मसले आखिर में इंसान हल करता है। इंसान अपनी ताकत से, अपनी काम करने के माद्दे से, अपने चरित्र से जो कुछ कहिए, लेकिन इंसान के हाथ में जब ताकत या एटॉमिक एनर्जी ताकत आती है तो इंसान की ताकत बढ़ जाती है, तोड़ने को, मारने को या अच्छा करने को और बनाने को। तो मैंने आपके सामने इसका इशारा इसलिए किया कि ज़रा हमारे सामने ये बात रहे कि हम कैसी दुनिया में रहते हैं, कैसी लड़खड़ाती हुई दुनिया है, मालूम नहीं किस तरफ चले किस तरफ गिर जाए। खैर, कोई दुनिया को संभालना तो हमारे काबू के बाहर है, ना हमारी खास जिम्मेदारी है, यूँ हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसी दुनिया में हम अपने मुल्क में क्या करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। हमारा मुल्क कैसे इन मसलों के का सामना करने के लिए तैयार हो, ये सवाल है। आपके सामने तरह तरह की बातें कही जाती होंगी और आपने सुना होगा 5 ईयर्स प्लान और पंचवर्षीय योजना और विवेक योजना और कम्युनिटी डेवलपमेंट और यहाँ सेल्फ कल्चर इंस्टीट्यूट में मैं आया, तो ये सब बातें कही जाती हैं और सब किसी न किसी इस सवाल के कोने के ऊपर इशारा करती हैं। लेकिन आखिर में हमारी जिम्मेदारी एक तो शख्सी व्यक्तिगत हर एक की कि अपने को क्या बनाता है और दूसरी अपनी समाज की सेवा कैसे करता है, समाज को क्या बनाता है, समाज के माने और बढ़ाइए तो सारा मुल्क भी हमारी समाज हो गई।
2: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

किसी भी शुभ कार्य या कार्यक्रम की शुरुआत जब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के स्मरण से होती है तो वहाँ का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वो बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। उनके चरणों में शीश झुकाते ही मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और हृदय में एक असीम शांति का संचार होता है। तो आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गणेश वंदन के साथ।

माध्यम है। जब हम सुबह उठकर शांत मन से प्रभु का ध्यान करते हैं तो जीवन की सारी चिंताएं और परेशानियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं। प्रभु का नाम हृदय में एक ऐसा दीपक जलाता है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें सही मार्ग दिखाता है।

संसार में हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है, लेकिन परमात्मा का साथ अटूट है। वो हमारे सुख और दुख दोनों में हमारे सबसे करीब होते हैं। जब हम पूरी तरह उन पर विश्वास कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और आनंदमय हो जाता है। उनकी कृपा ही हमारे जीवन का असली आधार बन जाता है।

तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही तो मेरी जिंदगी है। तेरे दर पर सजदा करना, तुझे याद करके रोना, पूजा यही है मेरी, यही तो मेरी बंदगी है। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों ना फैले, तू मालिक जहां है, तेरे दर में क्या कमी है।

सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में सौंप देना है। जब हम अपनी इच्छाओं को उनकी मर्जी से जोड़ देते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत संतोष पैदा होता है, और यही संतोष हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की शक्ति देता है।

परमात्मा हर जीव के भीतर वास करते हैं, इसलिए किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। जब हमारे दिल में सबके प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव होता है, तब हमारा पूरा जीवन ही एक सुंदर भजन बन जाता है। इसी भाव के साथ जीने से हमारा ये जीवन और मन हमेशा पवित्र रहता है।

कार्यक्रम आराधना में आज आपने सुने हरि ओम शरण, नंदिनी शरण, सुरेश वाटकर, मोहम्मद रफी, जीवन चंद्र आर्या और अनूप जलोटा के गाए कुछ भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूँ सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 27 मई। आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। श्रोताओं, आज 27 मई है और भारत के इतिहास में आज का दिन बेहद भावुक और महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन साल 1964 में आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व करने वाले चाचा नेहरू के अचानक निधन से उस समय पूरा देश शोक में डूब गया था। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने से लेकर देश को वैज्ञानिक और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा राष्ट्र उनके दूरदर्शी विचारों, उनके महान नेतृत्व और देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 27 मई 2018 को हुई थी, जिसे हर साल वैश्विक स्तर पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस विशेष दिन को मनाने के लिए 27 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 27 मई 1994 को लंदन में यूरोपीय सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एक मजबूत और त्वरित चिकित्सा प्रणाली का विकास करना था। तब से लेकर आज तक ये दिन न केवल इस क्षेत्र के ऐतिहासिक सफर को याद करता है, बल्कि संकट के समय मरीजों को तुरंत प्रोफेशनल इलाज मुहैया कराने और जीवन रक्षक स्वास्थ्य कर्मियों के अमूल्य योगदान को सराहने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। 27 मई को दुनिया भर में विश्व ऑटर दिवस भी मनाया जाता है। ऑटर, जिन्हें हम हिंदी में उत बिलाव कहते हैं, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले बेहद

सारे चंचल और बुद्धिमान जीव हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में पाई जाने वाली इनकी 13 प्रजातियों में से अधिकांश आज अवैध शिकार, प्रदूषण और नदियों तालाबों के खत्म होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं। उदबिलाव हमारी जल प्रणालियों को साफ और संतुलित रखने में एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनका बचना बेहद ज़रूरी है। आज के दिन का मकसद हम सभी को ये याद दिलाना है कि प्रकृति के इस खूबसूरत और मासूम जीव को बचाने के लिए हम नदियों को साफ रखें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। 27 मई का दिन हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1894 में हिंदी के महान निबंधकार, आलोचक और प्रख्यात इतिहासकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म हुआ था। साहित्य जगत में बख्शी जी के नाम से मशहूर उन्होंने अपनी धारदार लिखनी और सरल भाषा शैली से हिंदी निबंध विधा को एक नया आयाम दिया। उन्होंने मशहूर साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का संपादन भी बेहद कुशलता से संभाला। छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे बख्शी जी ने झलमाला और अंजलि जैसी बेहतरीन कहानियां और प्रायश्चित जैसा प्रसिद्ध नाटक हिंदी जगत को दिया है। इसके अलावा इनके निबंध संग्रह पंचपात्र और पद्मवन आज भी पाठकों के दिलों में रचे बसे हैं। आज इनकी जयंती पर रेडियो परिवार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से हिंदी भाषा के इस अनमोल रत्न को शत शत नमन है। 27 मई का दिन माया नगरी मुंबई के इतिहास में एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक याद लेकर आया है। आज ही के दिन साल 1991 में मुंबई के मरीन ड्राइव पर भारत के सबसे पहले और पुराने सार्वजनिक मछलीघर यानी तारापुर वाला एक्वेरियम का भव्य उद्घाटन हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों शुरू हुए इस एक्वेरियम का नाम मशहूर पारसी परोपकारी डीबी तारापुरवाला के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसके निर्माण के लिए उस दौर में 2 लाख की बड़ी धनराशि दान की थी। शार्क, कछुए और ऑक्टोपस जैसे सैकड़ों अनोखे समुद्री जीवों को समेटे ये एक्वेरियम दशकों तक न सिर्फ बच्चों और पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र रहा है। और 27 मई की तारीख भारत के ज्ञान और अकादमिक जगत के लिए भी एक गौरवशाली याद लेकर आई है। आज के दिन साल 1928 में भारत के प्रतिष्ठित इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्र जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के नज़रियों को बदलने वाले प्रोफेसर विपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। इनकी लिखी किताबें जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक भारत का इतिहास आज भी देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक धर्म ग्रंथ की तरह माना जाता है। धर्म निरपेक्षता और वैज्ञानिक चेतना के अडिग समर्थक रहे विपिन चंद्र जी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए साल 2010 में देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज इनकी जयंती पर रेडियो परिवार और हमारे सभी श्रोता देश के इस महान लेखक और मार्गदर्शक को सादर नमन करते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। आज इस कार्यक्रम का विषय है खुश रहना सीखें। अक्सर हमारे खराब मनोदशा का प्रभाव हमारे कार्यों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और हमारे कार्य सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते। खराब मन का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सारे दिन उस बिगड़ी हुई मनोदशा के साथ रहा भी तो नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी मनोदशा को ठीक करने की कला आनी चाहिए। जीवन शैली में अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारी मनोदशा में तेजी से बदलाव आता है और हम खुश रहना सीखते हैं। तो उनमें सबसे पहली आदत है मुस्कुराने की आदत। इससे शरीर में खुशी पैदा करने वाले एंडोर्फिन्स हार्मोन पैदा होते हैं। ये हार्मोन चेहरे की मांसपेशियों के फैलने से उत्पन्न होते हैं और शरीर में तनाव को कम रखने वाले हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। इसलिए भले ही हम दिल से खुश ना हो पाएं, लेकिन अपनी मुस्कान सदैव अपने साथ रखें। अगला है आभार व्यक्त करें। जीवन में हमारे पास जो कुछ है, जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी सहायताएं हैं, उन सब के लिए दिल से कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। छोटी छोटी मदद के लिए दूसरों का शुक्रिया या धन्यवाद ज़रूर करें। अगर जोर से शब्दों के साथ नहीं कह सकते तो मन में ही इसे दोहराएं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ज़रूरी साधन सुविधाएं कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश हैं और कम साधन सुविधाओं में ही अपना जीवन जीते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहें। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही परेशानी में घिरा हुआ है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में भले ही हमारा जीवन उलझा हुआ हो, लेकिन दूसरों का जीवन आसान बनाने में उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमें बेहद खुशी मिलेगी। निःस्वार्थ भाव से की गई मदद स्वयं को खुशी देता है और दूसरों के मन में जो प्रसन्नता पहुंचती है, उससे मदद करने वाले का व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है और आत्मविश्वास से भर जाता है। परिजनों को गले से लगाएं। एक अच्छा स्पर्श तुरंत अपना जादुई प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति को मनो

स्वभावों को बदल देता है। इससे शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स का स्राव भी होने लगता है। उदासी के क्षणों में भी किसी को प्यार से गले लगा लेना ऐसा संवाद होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन इसका असर कहे जाने वाले कई हजार शब्दों से भी बढ़कर होता है और हम खुश रहना सीख जाते हैं। अगला है संगीत सुनें। मनोभावों को बदलने में संगीत अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत के स्वर हमारे मन की तरंगों पर अपना असर डालते हैं। यूं तो प्रकृति में किसी न किसी रूप में संगीत की तरंगें बहती ही रहती हैं, जैसे नदियों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट, बहने वाली हवा से पेड़ के पत्तों की सरसराहट। संगीत के इन स्वरों का भले ही कोई अर्थ हमें समझ में ना आए, लेकिन इन स्वरों के कारण वातावरण में जो हलचल होती है उससे हमारे मन में भी हलचल होने लगती है और इन्हें निहार कर हमारी मनोदशा धीरे धीरे बदलने लगती है। इसके साथ ही गीत संगीत का सुंदर स्वर भी हमारे मन पर सकारात्मक असर डालता है। गीत संगीत का आनंद लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस दौरान उदासी वाले गीत ना सुनें, बल्कि मन को खुश करने वाले गीत सुनें। हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम हैं और हमें उत्साह के साथ इन परिस्थितियों से होकर गुजरना है। इस तरह पूरे विश्वास के साथ स्वयं से कहे जाने वाले सकारात्मक विचार हमारे मन पर मंत्र की तरह अपना जादुई असर दिखाते हैं और हमारे मनोभावों को बेहतर बनाते हैं और हम खुश रहना सीख जाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

0: पूर्व आईपीएस अधिकारी इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकाणां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी

0: ओङ्गः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानां आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढ़ विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

धीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज की चर्चा होगी सबको नहीं स्वयं को खुश रखें विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनेगा श्रीमती पूर्णा पंत तिवारी की वार्ता, दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं दिन में 1:30 पर, दिन में 2:30 पर होती हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं बीज शोधन क्यों आवश्यक विषय पर श्री BD पांडे की पूर्व प्रसारित वार्ता। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा संपूर्ण शहरी रोजगार योजना उत्तरायण। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मादक पदार्थों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय योजना विषय पर चर्चा। इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45। कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में शाम 6:41 पर, और हमारे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनते हैं शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन से लाभ विषय पर, और रात्रि 8:00 लोक गाथा में आज आप सुनेंगे नल दमयंती का 10वां भाग। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर सुनेगा पंडित जसराज का राग गुंजी कांधड़ा में गाया ख्याल। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोकमंजरी आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर सुनेगा।

शिरोमणि भद्रौ जी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत लोकसुर आप सुनते हैं पूर्वाहन 11:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत दिन में 2 बजे और शैलस्वर शाम 5:05 पर। गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सबरंग सुनेगा सुबह 10:05 पर और सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, सुबह 10:35 पर सुरबहार। आज इस कार्यक्रम में शीर्षक गीत के अंतर्गत हमारा आज का शीर्षक होगा नैना। सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और शाम 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे ए हरिहरन, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। राज्य में टेक होम राशन का वितरण अब चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। IRCTC अगले महीने ऋषिकेश से 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में हरित हरिद्वार अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह घोषणा की।
1: और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: राज्य में टेक होम राशन का 100% वितरण चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इससे पात्र लाभार्थियों तक राशन का सही तरीके से वितरण हो सकेगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चेहरा आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू

0: करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन नैनीताल में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फिनबोध एवं उत्तरवाणी ऐप और असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्य सामग्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इन पहलों को उत्तराखंड की आर्थिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षमता को सशक्त बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कहा कि फिनबोध ऐप वित्तीय साक्षरता को सरल और व्यावहारिक रूप से आम जन तक पहुंचाने का अभिनव माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के लिए निवेश, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कर नियोजन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की जानकारी आवश्यक हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐप आधारित माध्यमों से युवा तेजी से सीखते हैं और यह पहल वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने उत्तरावाणी ऐप को उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने निजी कंपनी के सहयोग से उत्तराखंड इंडस्ट्री अकादमिक कॉन्क्लेव ऑन हाइड्रोजन का आयोजन किया। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, शोधकर्ताओं और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के भविष्य पर मंथन किया। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता उत्तराखंड हाइड्रोजन वैली की अवधारणा रही, जिसमें IIT रुड़की को केंद्रीय ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस मॉडल के तहत उद्योगों, सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को जोड़कर उत्पादन, भंडारण, परिवहन और औद्योगिक उपयोग सहित संपूर्ण हाइड्रोजन वैल्यू चेन विकसित करने की योजना बनाई गई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अग्निवीर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की ऑनलाइन परीक्षाएं जून 2026 में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समय समय पर भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC अगले महीने ऋषिकेश स्टेशन से दो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन करेगा। पहली ट्रेन 12 से 23 जून तक 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगी, जबकि 29 जून से 10 जुलाई तक चलने वाली दूसरी ट्रेन दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। यात्री अपनी सुविधा अनुसार योगनगरी, ऋषिकेश व हरिद्वार सहित कई स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 12 जून को योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर व घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। 11 रात और 12 दिनों के इस टूर के लिए IRTC ने 24,100 रुपये प्रति व्यक्ति पैकेज तय किया है। पैकेज में स्लीपर क्लास का कन्फर्म टिकट, खाना व ठहरने की सुविधा शामिल है। थर्ड एसी के लिए 40,890 व सेकेंड एसी के लिए 54,390 का भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि EMI के जरिए भी पैकेज लिया जा सकता है। वहीं 29 जून से 10 जुलाई तक संचालित होने वाली दूसरी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर, मदुरे, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए शुरू किए जा रहे हरित हरिद्वार अभियान को सामाजिक संगठनों और आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। प्रशासन की ओर से प्रस्तावित इस विशेष वृक्षारोपण अभियान को लेकर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठन में उत्साह देखा जा रहा है। अभियान की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में मुख्य विकास अधिकारी और अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अभियान में सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में आगामी मानसून सत्र के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण और देखभाल को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर

0: किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा और लोगों को इससे व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ईद उल अजहा के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में ईद उल अजहा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने पूरे जिले को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर में विभाजित किया है। पुलिस, पीएससी और खुफिया एजेंसियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जबकि सोशल मीडिया की भी निगरानी रखी जा रही है। बहादराबाद मस्जिद के मुफ्ती शाहरुख मिसबाही ने मुस्लिम समाज से जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है।
1: ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा भी बड़ा त्यौहार है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मना करदा जानवरों की कुर्बानी हरगिज ना करें।
0: उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक लेते हुए उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि वास्तविक और पात्र किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कीवी एक उच्च मूल्य वाली नकदी फसल है और जिले में कीवी उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्थानीय किसान इसका लाभ उठाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर सकें। श्री आर्य ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल बड़े काश्तकारों तक ही सीमित न रहे, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी कीवी मिशन से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। राज्य में टेक होम राशन का वितरण अब चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। IRCTC अगले महीने ऋषिकेश से 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में हरित हरिद्वार अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शिरोमणि भद्रौजी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शिरोमणि भद्रौ जी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का।

0: कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के कलाकार हैं शिरोमणि भद्रौ जी।
1: शिवजी को डमरू बाजो, शिवजी को डमरू।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने शिरोमणि भद्रौ जी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में

0: हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
2: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
4: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से

0: प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to be aware of the country's demographic change. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का राग गूंजी कान्हड़ा में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी केदार पंडित ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता होगी 1200 किलोवाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला

0: कुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे और राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

श्रोताओं, दिल की बात जब लफ्ज़ों से बयां नहीं होती तब संगीत जन्म लेता है, और जब वो संगीत आप सभी की पसंद का हो तो बात ही कुछ और होती है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में। तो रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और अपनी यादों के गलियारों में खोने के लिए तैयार हो जाइए। आज के सफ़र में मैं हूँ आपके साथ सौम्या कांडपाल, और लीजिए पेश है कार्यक्रम के आरंभ में ये पहला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने जॉली एलएलबी 2 फिल्म का ये गीत सुना। सुखविंदर सिंह, कादिर मुस्तफ़ा और साथियों की आवाज़ों में विशाल खुराना ने ये गीत संगीत से संवारा था और लिखा था जुनैद वासी ने। और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की थी। मध्य प्रदेश जबलपुर से थे अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, प्रीति, रितु, कृष सिंह और इनके ढेर सारे साथी। दरबार कॉलोनी सनावत से थे किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु अनुराग, सुलोचना और चारवी सांवले। लोर में चचेरी छत्तीसगढ़ से माशोता थे शंकर कोलाम, संतोषी, अजय, संध्या और शिवम कोलाम। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से थे ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कराज जिला गाजीपुर से थे अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। कोटवा रोड वाशी महाराष्ट्र से थे मास्टर विट्ठल सुरोशी, सुषमा, परिधि, मायरा और इनके परिवारजन। छत्तीसगढ़ सरगांव पीपर रोड से थे दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। कुल सिटी बरकाकाना से थे अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सहानी, अफजल मलिक और इनके ढेर सारे साथी। और इसी गीत के इंतजार में जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से थे बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।

आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम का संगीतबद्ध, सईद कादरी का लिखा जुबीन की आवाज में गैंगस्टर फिल्म का ये गीत, हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। चांदनी चौक पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके परिवार के ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है हिंगड़ी से जगदीश धाकड़, नैना, रंजूबाई, युवराज, शिवांगी धाकड़ और इनके ढेर सारे साथी। छोटी बलिया करजत सिंह हैं, अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, आसमा परवीन, आसमा नौरीन, परी साबिया, आशु और इनके ढेर सारे साथी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रजिता खुराना और केशु खुराना। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से इसी गीत को सुनना चाहा है नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल, अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद ने। श्रीरामपुर अविका आर्ट्स से हैं अशोक कुंभार, अविका जीविका और सानू कुंभार। श्रीरामपुर कुंभार गली से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका। पूनावाले पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा अविका और शायशा सोनवनी। और गांधीबाद अकोला से हमारे श्रोता रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय, सरोज चौक अमरावती से नसीम बेगम और तबस्सुम। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर गैंगस्टर फिल्म का ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

गांव हांडी खेड़ा सिलसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा, शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज विशाल, अमरावती से प्रकाश ढेकरे, वर्षा श्रद्धा और श्रावणी ढेकरे, डोरगांव छत्तीसगढ़ से राधिका, रजनीश, मनीष, अनिष्का और तन्मय, नई दिल्ली उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, सनावत एमपी से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक कुमार और राजकुमार बोडाना, आदर्श नगर ग्राम बठेना छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजवती साहू, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू और रेशमा साहू, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार और गांव जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं हेमा सरदेसाई, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में गरम मसाला फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हमारी इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। गांव जाखो राजस्थान से हैं विमला अमरजीत, सुंदर प्रियंका प्रकाश और तारा। इस गीत को सुनना चाहा है लाल माता सुदामा नगर जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी ने। वेस्ट दिल्ली तिलक नगर से हैं आर एस वी टी आर के शुक्ला। रघुबीर नगर दिल्ली से हैं श्रुति ओबेराय किरण सिंह और सृष्टि ओबेराय। रानीगंज पश्चिम बंगाल से रेहान शर्मा रोशनी रवि इंद्र करणदीप और भूपेंद्र। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा स्वीटी और इनके पूरे परिवारजन। नई दिल्ली राजौरी से हैं ध्वनि स्वीटी और सानवी। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया पिंटू सेन हरिनिवास खेड़े बाबूलाल चौधरी दीपक सचिन कटारिया कृष्णा विराज अर्णव कृतिका काव्यांशी श्रीमती प्रभा कटारिया और आदर्श और धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और अयान बाबू।

श्रोताओं, इन सभी ने सुनना चाहा है अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गीत। आतिफ असलम की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं, संगीत प्रीतम का।

वीर ज़ारा। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में, जावेद अख्तर का गीत, संगीत मदन मोहन का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। जालना से हैं परमेश्वर शिंदे, कावेरी, प्रहलाद वैष्णवी और इनके ढेर सारे साथी। पूना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं बाबा फरहान, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, नीलोफर, शनू और शब्बो। राज बिराज नेपाल से हैं श्याम कुमार हाको, तारा देवी, राजन हाको, कल्पना, सुनैना, सुकन्या, पिंकी, खुशबू, श्रुति, पूजा हाको, पूर्णिमा, सनी और इनके परिवारजन। पंडरपुर से हैं जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानूबी और बादशाह मुलानी। सनावद मध्य प्रदेश यादव मोहल्ला से हमारे श्रोता हैं दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान और इनके परिवार के सभी सदस्य। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाघा मुंडा कोमा खान। छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और ओजस्वी देवगन।

शिवाजी चौक कटनी से अनिल अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, लालू सोना मोना, हनी यश और इनके मम्मी पापा, शाहजी नगर नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटके और विनोद खटके, गुलशन रेडियो क्लब अजमेर राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा असद और अरहम हाशमी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा, पंजाब कॉलोनी बठिंडा से जगमान

सिंह डाकला, हैप्पी डाकला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार। करणवीर हाउस बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद्र, सिमरन और अभिजीत। और नागपुर यूनिवर्सिटी तिवसा से डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, प्रज्वला ताई, डॉक्टर अपेक्षा मिन दीवान और कुमारी व्याख्या। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं आनंद राज आनंद का संगीतबद्ध जाल फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण ने और गीत लिखा है समीर ने।

विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, वंदना प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन और आदेश कुमार काले। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय बाहनपाल, जयहिंद विमलेश, दीक्षा प्रतीक्षा, दिव्यांश और इनके परिवारजन। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासो, अन्नव आनंद, सत्यमानंद। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुटी भगत। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्ची, गणेश कार्तिक, परी, खुशी, वंदना, स्वाति प्रयाग और इनके ढेर सारे साथी। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के, नंदा बोट के हनुमान और उत्तम कुमार बोट के। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। और लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू,

जीवनलाल, निमिष एवं सतीश, मुकेश कुमार और इनके परिवारजन। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं आक्रोश फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है जावेद अली ने, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा था फ्रेंड्स कलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा ने। मालियान सदरनाथ मेरठ से थे अनिल जैन, संयम, मुस्कान जैन, जीवम, आदि जैन, अंश और भव्य जैन।

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं लज्जा फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर का ये गीत है, संगीत अनुमलिक का, पसंद है, भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवारजनों की। इसी गीत को सुनना चाहा है। धरदी सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवानी, करुल्ला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और जी शान वारसी, कासगंज से हैं जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी और आबाद खान। इस गीत को सुनना चाहा है। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, शैलेश गुहाणकर, वैशाली सुमित ध्वनि और परी गुहाणकर, और राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, सुशांत और जय भीरू।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम

0: मीडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सपरंग। आई कार्यक्रम में आपको अब सुनवाते हैं ए हरिहरन की गाई ये गजल।

गुलाम अली की गाई इसी गजल के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयार की गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं को अब खिलाड़ियों और आम खेल प्रेमियों के लिए पे एंड प्ले व्यवस्था के तहत खोलने का फैसला किया है। खेल विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों, खेल मैदानों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग अब निर्धारित शुल्क देकर नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से जहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, वहीं खेल विभाग को भी नियमित राजस्व प्राप्त होगा, जिसे खेल विकास निधि में जमा किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार का उद्देश्य खेल सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुकिंग और समय स्लॉट की सुविधा यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बन सके। हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने विकास खंड कार्यालय रुड़की का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित पाए गए सहायक विकास अधिकारी पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। CDO ने कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने VVG रामजी योजना की प्रगति में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए ANPR से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन,

0: पुलिस, राज्य कर एवं खनन विभाग सभी को ANPR कैमरों के एक्सेस की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रदेश में एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा अपने और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संकलित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को मासिक रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व एक उपसमिति गठित कर प्रस्तावों की स्क्रूटनी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में डुप्लीकेसी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के तहत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और कैंटीनों पर छापेमारी की। भगवानपुर क्षेत्र में एक कैंटीन से लिए गए पनीर के नमूनों में गुणवत्ता संबंधी कमी मिलने पर करीब 4.5 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं कई स्थानों पर साफ सफाई और खाद्य मानकों में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारियों को ताजा खाद्य सामग्री उपयोग करने, एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद न बेचने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मैदानी जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इस बदलाव के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

फिल्म संगीत के इस खूबसूरत सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारा प्यार भरा नमस्कार है। आज हमारे पास मौका है कुछ पल थमने का और अपने ही भीतर झांकने का। आज हमारा ये सुरबहार का कार्यक्रम शीर्षक गीतों पर आधारित है और हमारा आज का ये विषय जितना सरल है उतना ही गहरा है। नैना, नैना यानी हमारी आँखें, जो बोलती भी हैं, रोती भी हैं और हमारी सबसे कीमती यादों को संभाल कर भी रखती हैं। हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आता है जब हम अपनी आँखें मूंद देते हैं तो कॉलेज के वो दिन, वो दोस्तों का शोर और वो पहली मोहब्बत का एहसास बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने बीते हुए उस कल को महसूस करें इन नगमों के साथ। तो आज का शीर्षक गीत आधारित है नैना विषय पर।

हम सब अपनी आंखों में कितने बड़े बड़े सपने लेकर जिंदगी के सफर पर निकले थे। एक दौर था जब हमारी इन आंखों में पूरी दुनिया को मिट्टी मुट्ठी में करने का जुनून था, हर नई चीज़ को देखने की अपेक्षा फिक्र थी। जब हम उस दौर के गानों को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन का वो समय याद आता है जब हमारे पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे नैन थक कर आखिर में उसी सुकून को ढूंढती हैं जो हमें अपने पुराने आंगन, अपनों के चेहरे और अपने घर में मिलता है। ये संगीत सुनते ही महसूस होता है कि चाहे हम कितने ही बड़े हो गए हों, हमारा वो अल्हड़पन आज भी हमारी आँखों के किसी कोने में जिंदा है।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। वक्त बदलता है, रास्ते अलग होते हैं और मुस्कुराती हुई आँखों में खामोशी छा जाती है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में जब हम किसी बेहद ख़ास दोस्त या अपने को दूर जाते देखते हैं तो दिल का एक कोना भारी हो जाता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी को अलविदा कहा है और उस वक्त जो बात हम जुबान से कह नहीं पाते वो हमारे ये नैन रो कर या चुप रह कर कह ही जाते हैं। जबान भले ही खामोश हो जाए लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जादुई जुदाई का वो गम, वो बहते हुए आंसू और फिर भी अपनों की सलामती की दुआ मांगती ये आंखें ही हैं जो हमें आज भी इंसान बनाए रखी हैं।

दोस्तों, हमारे इन नैनों की एक और अजीब दास्तां है। ये जब सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हैं तब पूरी तरह खामोश हो जाती हैं। याद कीजिए अपनी ज़िंदगी का वो दौर जब किसी को पहली बार देखा था। ज़बाँ पे इतनी हिम्मत कहाँ थी कि दिल का हाल बयां कर सकें। तब इन नैनों ने ही सारा काम किया। वो नज़रों का चुपके से मिलना, किसी को देखकर पलके झुका लेना और फिर चुरा कर देखना, ये एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के दिल में हमेशा के लिए ठहर जाता है। आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हर श्रोता की आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा और वो पहली धड़कन का एहसास एक पल के लिए ज़रूर तैर गया होगा, क्योंकि हमारे नैन अपना वो पहला एहसास कभी नहीं भूलते।

दोस्तों, इस सफ़र के आखिरी मोड़ पर आते हैं वो जज्बात जो इस पूरी महफिल की रूह हैं। जब आँखों के संगीत की बात होती है तो यहाँ मौजूद हर शख्स अपनी किसी पुरानी अधूरी या बेहद गहरी मोहब्बत की याद में डूब जाता है। सालों बाद जब पुराने साथी एक दूसरे के सामने आते हैं तो जबां चुप रहती है, पर ये नैन सब कुछ बयां कर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान बदल जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन इन आँखों में जो यादें और जो चेहरे छिप जाते हैं वो कभी नहीं मिटते।

दोस्तों, हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अपने इन आँखों में, अपने इन नैनों में हमेशा सपनों के दिए जलाए रखिएगा, क्योंकि जब तक आँखों में उम्मीद जिंदा है, जिंदगी का हर सफ़र बेहद खूबसूरत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आपने नया दौर फिल्म का एक गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं जब हैरी मेट सेजल फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है गरिमा वहल और सिद्धार्थ सिंह ने। संगीत है विक्की प्रसाद का।

फौजी भाइयों, आइए अब आपको सुनवाते हैं गुंडे फिल्म का ये गीत। जावेद अली, शादाब फरीदी और साथियों की आवाज़ों में इरशाद कामली के बोल हैं, संगीत है सुहेल सेन का।

अभी हमारे फौजी भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं प्रदीप कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। लीजिए आप सुनिए कुमाऊनी लोकगीत कलाकार हैं सुरेश प्रसाद।

बुढ़ कसी हसन की काला लाय माया छोड़ जाली भुगतली खाला मेरा हिया भरी ऊंचा चसिननी ताला हिरदी में बुढ़ी गछ मोनी कैसो।

काटिमे को साचा झगुली को पोंछा धर्मे को गोछा साटी में को साचा झगुली को पोंछा धर्मे को गोछा मदनवा नोछा दिल्ली में बैरू छा नन भवा खेलू छा जय घड़ी समझ।

कुलिया रायो ढकुनियालो ठायो तेल चायो सनमुख मेल भरी पायो टेपुलिया रायो ढकुनियालो ठायो तेल चायो सनमुख मेल भरी पायो मुखड़ी को मासु मेरो सुरती ले खायो बुढ़िया का बल दले आदगड़ो पायो अरे घी दूध की कमी पड़ी पका लायो सायो।

0: AIR at 90.
1: और लोक सुर कार्यक्रम में अब हम श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। गायिका है अनीता रावत।

तो श्रोता अनीता रावत के गाय से गढ़वाली लोकगीत के साथ कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

ही जनमानस को सम्मोहित करने वाली मधुर मिठास घुली सुरमई मदमस्त करने वाली बांसुरी एक ना जाने कितने इसके रूप स्वरूप। कान्हा के संग सदा रहने वाली मधुर तान छेड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड को सम्मोहन में डालने वाली बांसुरी से जुड़ी ना जाने कितनी बातें कितने किस्से कितना कुछ हमने सुना है गुना है। हमारे भारतीय संगीत में भी बांसुरी का अपना एक खास स्थान है। बांसुरी के सुर सजते हैं तो संगीत को पूर्ण माना जाता है। ऐसे ही हमारे देश में बांसुरी के पर्याय महान कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। श्रोताओं, उनके नाम में हरि है, हुए ना वो बंसी प्रसाद चौरसिया। उन्होंने कभी बताया था अपने साक्षात्कार में, ये कैसे हो गया मेरी भी समझ में नहीं आता, संभवतः भगवान ने जब हाथ में बंसी पकड़ाई तो सोचा होगा कि नाम भी उनके जैसा ही होना चाहिए। सच, हरि के होठों पर कान्हा की बांसुरी सजी है और आज मेरी पसंद समर्पित है बांसुरी को और बांसुरी के महान कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। श्रोताओं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी ने जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में बांसुरी को नया आयाम दिया, बांसुरी को वो दिव्य वाद्य कहते हैं। संगीत के साथ सुरों को बांसुरी के माध्यम से उन्होंने जो दिव्यता प्रदान की है, वहीं उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में भी उनकी बांसुरी की मनमोहक धुनों ने लोगों को बेहद आकर्षित किया है, सम्मोहित किया है और उनकी धुनों ने फिल्मी दुनिया में भी धूम मचाई है।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजु पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, बांसुरी की मीठी तान अभी आपने सुनी। बांसुरी सुर से सजी, बांस से बनी, मोहन के अधरों से लगी।

तो श्रोताओं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। पंडित जी ने अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध किया है। उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन संगीत की तानों में उनका मन कुछ इस तरह से रमा कि मात्र 13 साल में उन्होंने किसी लड़के से बांसुरी मांग कर पहली बार धुन छेड़ी और इस धुन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। फिल्मी दुनिया की बात करें, यूं तो शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके कई कारनामे हैं, उन्होंने अनगिनत प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो साल 1964 में प्रदर्शित फिल्म बेटी बेटे के गीत राधिके तूने बंसुरी बजाई, इस गीत में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी बांसुरी की जादुई फूंक का सम्मोहन भरा था।

तो श्रोताओं, यहाँ से शुरुआत हुई पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की, और फिर खयाम साहब के लिए बहारो मेरा जीवन भी सवारो आखिरी खत फिल्म का जो ये खूबसूरत गीत है। इस गीत में जिन कलाकारों ने संगत किया उनमें संतूर पर जाने माने मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी पर मशहूर कलाकार जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे दिग्गज कलाकार इस गीत में शामिल थे। और आवाज़ की बात करें तो बहुत ही ख़ास आवाज़ लता मंगेशकर जी की थी। कैफ़ी आज़मी साहब ने इसको लिखा था और संगीत खयाम का।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतो, हिंदी सिनेमा जगत में पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की यानी शिव हरि की बेमिसाल जोड़ी के एक से बढ़कर एक संगीत से सजी बेहतरीन फिल्मों के संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला है। इन फिल्मों के नाम आपको बताए देते हैं, यूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। कुछ जानी पहचानी और बेहद चर्चित फिल्में हैं चांदनी, लम्हे, सिलसिला, साहिबा, डर, फासले, विजय, परंपरा जैसी कई फिल्में हैं जिसमें शिव हरि की जोड़ी की जो खूबसूरत धुनों से सजा संगीत है वो हमेशा आज भी दर्शकों को बहुत भाता है।

तो श्रोताओं, पंडित राजाराम और बनारस के बांसुरी वादक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने संगीत की विधिवत शिक्षा ली। पंडित जी ने न केवल शास्त्रीय संगीत को नवीन बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि बांसुरी को अंतर्राष्ट्रीय तान बनाकर भारत को हमेशा गौरवान्वित किया। गायक जाने माने संगीत निर्देशक हेमंत कुमार के साथ लंदन में हुए रविंद्र संगीत केंद्रित विशेष कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने गए पहली बार साल 1966 में, और ये विदेश में उनका पहला दौरा था। इस यात्रा के दौरान पंडित जी ने उन संभावनाओं का गहरा विश्लेषण किया जो भारतीय संगीतकारों के लिए जाहिर थीं। धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के द्वार उनके लिए खुलते गए। अंततः वो समय भी आया जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भारत से ज़्यादा समय विदेशी जमीन पर गुजारने लगे। बीबीसी के लिए दो सिम्फनियों का उन्होंने निर्माण किया। साल 1989 में एक सरकारी कॉलेज में उन्होंने अध्यापन भी किया और विभिन्न जुबानों में उड़िया, बांग्ला, दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया। उड़िया फिल्म माँ के लिए साउंड ट्रैक उन्होंने तैयार किया। अवतार कृष्ण कौल ने उनसे संपर्क किया और इस तरह उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी अपना संगीत का माधुर्य बिखेरा।

अनेक सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को। और जाने मानी फिल्मों के गानों की बात करें तो उमराव जान काहे को बिया ही ये वाला गाना हो, चाहे रजिया सुल्तान का जमीर की जंजीर की झंकार, रजिया सुल्तान का ही हरियाला बनना, हीरो फिल्म का मशहूर साउंड ट्रैक, क्रांति नगीना मनमौजी फिल्म में वादन के साथ ही प्रभातेश्वरी शिवांजलि सहित कई रागों का उन्होंने निर्माण किया। सच कहें तो पंडित जी ने सुरों की बारादरी को गुलजार किया, वहीं संगीत की बिरादरी को मजबूती प्रदान की। जटिल माने जाने वाले शास्त्रीय संगीत को जन रुचि का विषय बनाने वाले हरिप्रसाद चौरसिया लिविंग लेजेंड है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुनते ही कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि तरंगित हो जाती है। बांस की बनी साधारण सी बांसुरी जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के हाथों में सजती है तो इस बांसुरी में मानव हृदय को मोह लेने वाली असाधारण शक्तियां समाहित हो उठती हैं। हिंदी सिनेमा जगत में शास्त्रीय संगीत को पुनर्जीवित करने वाले महान कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी बांसुरी की गूंज सदा इस ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें आप सुनेंगी घर संसार।
1: वही

करते हैं आप सभी श्रोता बहनों का आज के घर संसार कार्यक्रम में। आप सभी को आपकी रेडियो सखी संगीता तिलारा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप सभी? हम तो हमेशा यही दुआएं करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें और हमारे साथ ये कार्यक्रम यूँ ही हमेशा सुनती रहें। तो बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वैसे सुनने में तो साधारण सा लगता है, लेकिन अगर इसे हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। और बहनों, वो विषय है सबको नहीं, स्वयं को खुश रखें। बहनों, हम अक्सर अपने जीवन में हर किसी की खुशी का ध्यान रखती हैं, बच्चों की पसंद, पति की ज़रूरतें, परिवार वालों की उम्मीदें, उनके साथ ही रिश्तेदारों की बातें, इन सब के बीच अगर कोई पीछे छूट जाता है तो वो होती हैं हम खुद। बहनों, हम दिन भर सबके लिए भागती हैं, सबकी चिंता करती हैं, सबकी खुशी की परवाह करती हैं, लेकिन क्या कभी खुद से पूछती हैं कि क्या मैं खुश हूँ? सच कहें तो बहनों, कई बार तो हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते रहते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। हम अपनी थकान छुपा लेती हैं, अपने आंसू भी पी जाती हैं और अपनी कई इच्छाओं को दबा देते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते करते हम बाहर से तो बहनों मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूटने लगते हैं। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अगर दीपक खुद बुझ जाएगा तो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? यानी अगर हमारा मन ही थका हुआ होगा तो रिश्तों में मिठास कहाँ से आएगी? बहनों, स्वयं को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद के लिए। अब आप यही सोच रही होंगी कि कैसे मैं खुश रहूं, खुद को मैं कैसे खुश रख सकती हूं, मैंने सबको देखना है, इन सब के बीच समय नहीं है। तो कभी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है? ठीक है बहनों, ये सब कुछ जीवन में है और जब तक हम हैं हमेशा यूं ही बना भी रहेगा, लेकिन आप भी तो हैं, खुद का क्या? इसलिए बहनों, कभी अपने लिए भी समय निकालिए। कभी क्यों बहनों, रोज़ अपने लिए समय निकालिए। वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपनी पसंद के गीत सुनिए, अपनी पसंद का खाना बनाइए, अपनी पसंद के कपड़े जिसमें आप अंदर से खुशी महसूस करें। कभी खुलकर हंस लीजिए, कभी बिना किसी भी वजह से आप खुद को आराम दीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए। और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी शांति को महत्व दीजिए। बहनों, हर किसी को खुश रखना ये संभव है ही नहीं। कुछ लोग तब भी नाराज़ी रहेंगे जब आप उनके लिए सब कुछ कर देंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक प्यारा सा नियम बना लीजिए, जहाँ आत्मसम्मान और मन की शांति खत्म होने लगे वहाँ खुद को संभालना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप खुद खुश रहेंगी तभी अपने परिवार को, रिश्तों को भी सच्ची खुशी दे पाएंगी। बहनों, हमारे अंदर की खुशी, बहनों हमारी जो अंदर की खुशी है, खुद की खुशी पूरे माहौल को खुशहाल बना देती है। तो आइए आज खुद से वादा करें, हम दूसरों की खुशी का कारण तो बनेंगे लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बहनों, खुद को खोकर किसी को पाया नहीं जाता, और जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वो जीवन की हर जो मुश्किल आती है बहनों, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं उसमें मुस्कुराना सीख जाता है। और जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भी कुछ यही बयां कर रहा है। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: स्वागत है मैनू एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। मैनू आज की महिला घर और कार्य क्षेत्र दोनों जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही है। अपनी मेहनत, समझदारी और आत्मविश्वास से वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और एक मिसाल कायम कर रही हैं। और बहनों, आज हम भी आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला। वार्ताकार हैं श्रीमती पूर्णा पंत तिवारी।
1: वही है शक्ति, वही है देवी, वही तो दुनिया चला रही है। इसी भ्रम में कई युगों से वो रोज रोटी बना रही है। आज की यह चर्चा उसके नाम है जो आधुनिक समाज में केवल दोहरी भूमिकाओं का बोझ नहीं ढो रही है, बल्कि उन्हें पूरे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गौरव के साथ जी रही है। वह वजूद जो हर दिन सूरज के क्षितिज पर आने से पहले जागता है और जिसके विश्राम करने से पहले आसमान के सितारों को भी नींद आ जाती है, वह एक साथ दो अलग अलग दुनियाओं को अपने नाजुक कंधों पर थामे हुए है। एक तरफ उसके घर की जमीन है तो दूसरी तरफ उसके सपनों का खुला आकाश। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने युगों युगों से इस दुनिया को रोशन किया है, अपनी चेतना से, अपनी मेधा से। लेकिन यह भी एक कड़वी हकीकत है कि दुनिया को उजाला देने के लिए उन्हें खुद न जाने कितने अंधेरों से गुजरना पड़ा है। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कई ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी कुर्बानियां और योगदान को इतिहास की मुख्य धारा ने हाशिए पर धकेल दिया है। यूरोप की धरती से उभर कर आया मिलेवा

मारीच का नाम इसका एक बेहद जीवंत उदाहरण है। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ पढ़ने वाली मिलेवा कोई साधारण महिला नहीं थी, वे एक असाधारण गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थी। जब आइंस्टाइन भौतिकी के नए आयाम तलाश कर रहे थे, तब सापेक्षता के सिद्धांत के जटिल गणितीय समीकरणों को सुलझाने में मिलेवा की कुशाग्र बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ था। दोनों साथ बैठकर शोध करते थे, जिसे वे खुद हमारा काम कहा करते थे। लेकिन अफसोस, जब यह सिद्धांत दुनिया के सामने आया और विज्ञान की दुनिया ने तालियां बजाई, तो सारा सेहरा अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिर बधा। मिलेवा का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। उन्हें एक वैज्ञानिक के बजाय सिर्फ आइंस्टाइन की पत्नी के रूप में समेट दिया गया। उन्होंने घर संभाला, बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और अपनी मेधा को पति की सफलता के पीछे छुपा दिया। मिलेवा का यह मौन त्याग सिखाता है कि महिलाओं की बौद्धिक क्षमता कभी पुरुषों से कम नहीं थी, बस उन्हें वह मंच और श्रेय नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। इसी तरह जब विज्ञान के शिखर की बात होती है, तो मैरी क्यूरी का नाम जहन में आता है। मैरी क्यूरी ने अपना पूरा जीवन, अपनी सांसें, यहाँ तक कि अपनी सेहत भी विज्ञान को समर्पित कर दी। रेडियो एक्टिविटी की खोज के दौरान उन्होंने जिस कठिनाई का सामना किया, वह अकल्पनीय है। एक समय ऐसा था जब पेरिस की वैज्ञानिक बिरादरी उन्हें स्वतंत्र वैज्ञानिक मानने से इनकार कर रही थी। समाज की संकीर्ण सोच उन्हें केवल पति पियरे क्यूरे की एक सहयोगी या असिस्टेंट के रूप में देखना चाहती थी। जब नोबेल पुरस्कार की बात आई, तो शुरुआती दौर में मैरी का नाम शामिल नहीं था। वह तो पियरे क्यूरे का बढ़प्पन और निष्पक्षता थी कि उन्होंने साफ कहा कि इस खोज की असली सूत्रधार मैरी हैं। मैरी क्यूरी ने न केवल दुनिया को पहला नोबेल जीत कर दिखाया, बल्कि पति की मृत्यु के बाद अकेले संघर्ष करते हुए दूसरा नोबेल पुरस्कार भी जीता। उन्होंने साबित कर दिया कि एक स्त्री का दिमाग और उसका हौसला दोनों ही असीमित है। स्त्रियों को किसी के सहारे की नहीं, बल्कि अपने हक के आकाश की जरूरत है। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां स्त्री के इसी अकेले और अडिग संघर्ष को बयां करती हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावस आज कज्जल अश्रुओं में। घेर ले छाया अमावस आज कज्जल अश्रुओं में। रिम झिमाले यह घिर आया घन सिहला। और होंगे नयन सूखे अलक चितवन में यहाँ। पर यहाँ सत विद्युतों में दीप खेलता अकेला। दीप खेलता अकेला। यदि भारत की बात करें, तो यहाँ दोहरी भूमिका और सामाजिक संघर्ष की सबसे अधिक मिसाल क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले ने पेश की। 19वीं सदी के उस दौर की कल्पना कीजिए, जब देश गुलामी और कुप्रथाओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। ऐसे में सावित्रीबाई फूले जब पुणे की सड़कों पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल की तरफ निकलती थी, तो समाज के ठेकेदार उन पर पत्थर और कीचड़ उछालते थे, अपशब्द कहते थे। लेकिन सावित्रीबाई के इरादे उस कीचड़ से कहीं ज्यादा पवित्र थे। वे अपने थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थी, साड़ी बदलती और बच्चियों से कहती, तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं यह अपमान भी सहने को तैयार हूँ। उन्होंने घर की जिम्मेदारियों, महात्मा ज्योतिराव फूले के सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ शिक्षा की जो मशाल जलाई, उसी का नतीजा है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के काबिल बन पाई हैं। इसी कड़ी में आनंदीबाई जोशी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। उस दौर में जब घर की चौखट से बाहर कदम रखना भी पाप और गुनाह माना जाता था, तब महज 14-15 साल की उम्र में एक नवजात बच्चे को खोने के दर्द से गुजर कर उन्होंने तय किया कि वे डॉक्टर बनेंगी, ताकि किसी और स्त्री को इलाज के अभाव में ना मरना पड़े। वे सात समंदर पार अमेरिका गई, रूढ़ीवादी समाज के तानों को झेला, गंभीर बीमारी का सामना किया और भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। इन महान विभूतियों ने पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ाया कि स्त्री का वजूद सिर्फ सेवा करना या चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि नए युग का सृजन करना है। इस उड़ान को भरते हुए आज की स्त्री समाज कि उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है, जो उसकी शारीरिक या भावनात्मक कोमलता को उसकी लाचारी समझ लेती थी। तभी तो किसी कवि ने उसकी इस अदम्य शक्ति को रेखांकित करते हुए लिखा है, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू,

0: शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। आज समय बदला है, आज की महिला कॉर्पोरेट ऑफिस की फाइलों, कंप्यूटर स्क्रीन्स और घर के चूल्हे चौके के बीच एक बेहद बारीक तार पर संतुलन बनाकर चल रही है। आज की दुनिया इसे बहुत ग्लैमराइज करती है। लोग मल्टीटास्किंग या सुपर वुमन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस प्रशंसा की आड़ में महिलाओं के भीतर की थकान, रातों की अधूरी नींद और मानसिक दबाव को अक्सर बड़ी चालाकी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा ठहर कर सोचने की जरूरत है। एक बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग के दौरान जब एक महिला अपनी कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश कर रही होती है, अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है कि उसके बच्चे को तेज बुखार है। उस एक पल में उसके दिल और दिमाग पर क्या गुजरती होगी। वह बाहर एक सख्त अनुशासन प्रिय लीडर बनी रहती है और भीतर वही ममता की व्याकुल मूरत। वह इस द्वंद को रोज जीती है। हर सुबह की मुस्कुराहट के पीछे कई अधूरी ख्वाहिशें और अनकही थकान छुपी होती है। स्त्रियां थकती हैं, उदास भी होती हैं। उनका भी मन करता है कि कभी सब कुछ छोड़कर बस आराम करें, पर वे रुकती नहीं हैं, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियों का एक अटूट पहरा है। इस बात को अब गहराई से समझना होगा कि इस दोहरी भूमिका का अर्थ यह कतई नहीं होना चाहिए कि दुनिया का सारा बोझ, सारी नैतिक जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के कंधों पर डाल दी जाएं। कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी खूबसूरत और मुकम्मल हो सकता है जब घर और बाहर की जिम्मेदारियां मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर निभाई जाएं। अक्सर कहा जाता है कि वह पुरुष बहुत अच्छा है, अपनी पत्नी की घर के काम में मदद करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि घर का काम या बच्चों की परवरिश सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं है जिसे पुरुष मदद कर रहा है। यह एक साझा जिम्मेदारी है। जिस दिन मदद शब्द को भागीदारी में बदल दिया जाएगा, उसी दिन महिलाएं सही मायनों में मानसिक रूप से आजाद होंगी और अपने पंख फैलाकर अपनी असली उड़ान भर पाएंगी। आज की नारी ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि उसे अब अपनी पहचान के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वह अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से गढ़ रही है। वह जरूरत पड़ने पर सीमा पर खड़ी सैनिक है। वह इसरो में बैठकर रॉकेट की उड़ान संभालने वाली वैज्ञानिक है। वह कॉर्पोरेट को संभालने वाली सीईओ है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र, कोई भी आसमान या कोई भी राह नहीं है जहां नारी के कदमों की छाप ना हो। उसने अपनी मेहनत से हर बंद दरवाजे को खोला है और साबित किया है कि उसकी क्षमताएं असीमित हैं, और इन सब से बढ़कर वह समाज को संस्कार देने वाली माँ और राष्ट्र निर्माता है। दोहरी भूमिका निभा रही इस सृष्टि को अपने आंचल में समेटे हुए महिलाओं की इसी अदम्य साहस, बेमिसाल खूबसूरती और शक्ति पर अल्लामा इकबाल का यह मशहूर शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं है ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं है ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे लिए मीलों आसमां और भी हैं। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरी जमी और मकां और भी हैं, कि तेरी जमी और मकां और भी हैं।
1: बहनों, अभी आप दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला विषय पर वार्ता सुन रही थी। वार्ताकार थी श्रीमती पूर्णा पंत तिवारी। बहनों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के सेगमेंट रसोई से के साथ। बहनों, इस गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों की सेहत की, खासकर तब जब रोज सुबह उनके टिफिन की तैयारी करनी हो। अक्सर हम यही सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा क्या दें जो वे खुशी से खाएं भी, हेल्दी भी हों और सुरक्षित भी। तो बहनों, आज के रसोई से के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं गर्मी में बच्चों का हेल्दी और सुरक्षित टिफ़िन के विषय में। सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन में कि हम अगर बात करें तो बहनों, उनके टिफ़िन में बहुत ज़्यादा ग्रेवी, क्रीम या कटे टमाटर, जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उन्हें ना रखें, क्योंकि गर्मी में इस प्रकार की चीज़ें जल्दी से खट्टापन ले लेती हैं। इसके बजाय बहनों, बच्चों के टिफ़िन में आप सूखा और हल्का खाना रखिए। जैसे पोहा रख सकती हैं, बेसन का चीला है, वेज रोल्स जिसमें आप अलग अलग प्रकार की सब्जियां रख सकती हैं। सूजी का उपमा है, सब्जियों से बनाई हुई सेवई, मोटी सेवई अगर आप सब्जियों से बनाएंगी वो भी पौष्टिक है, या फिर कोई सूखी सब्जी के साथ आप एक हल्का सा पराठा भी बच्चों के टिफ़िन में रख सकती हैं। बहनों अधिकतर हम गर्म खाना तुरंत बच्चों के टिफ़िन में रख देते हैं, क्योंकि बहनों माँ को चिंता होती है कि बच्चे ठंडा खाना ना खाएं, इसलिए अक्सर माएँ यही सोचती हैं कि बच्चा जब भी टिफ़िन खोले तो उसे गर्म नहीं तो गुनगुना खाना ज़रूर मिले। सर्दियों में तो अच्छा है बहनों, लेकिन इस मौसम में ये थोड़ा सा असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि बहनों ऐसा करने से टिफ़िन के अंदर भाप बनती है और यही नमी बैक्टीरिया बढ़ाने का कारण बन सकती है, इसलिए खाना थोड़ा ठंडा करके ही पैक करें। बच्चों के टिफ़िन में अगर आप फल रखती हैं तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इस वक्त ना काटें, बल्कि टुकड़ों को जो भी आप फल काट रही हैं उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काटें, और कटे हुए सेब अगर आप देती हैं बच्चों को तो उसमें हल्का सा नींबू लगा कर रखें, ये जल्दी से काला नहीं पड़ता है। बहनों जब भी फल रखें अलग डिब्बे में रखें जिससे वो सुरक्षित बने रहें। बच्चों के टिफ़िन में बहुत ज़्यादा खाना भरने के बजाय थोड़ा और संतुलित खाना उसमें आप पैक करके रखें, इससे बच्चा आराम से खा लेता है और खाना बर्बाद भी नहीं होता। बहनों बच्चों के टिफ़िन की स्वच्छता का भी तो पूरा ख्याल रखना होता है, वैसे तो हमेशा रखना होता है लेकिन गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे हमेशा अच्छे से धोकर सुखाकर ही खाना पैक करें। इस मौसम में हमेशा ताज़ा खाना बनाकर बच्चों को दें, क्योंकि बहनों कभी होता क्या है कि हम शाम होती है तो सूखी सब्जी फ्रिज वगैरह में रख देते हैं और वही बच्चों के टिफ़िन में रख देते हैं, तो ऐसा करने से आप बचें। हमेशा जब भी रखें उनके लिए ताज़ा बना के रखें, और ये भी ज़रूर बताएं कि खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर साफ़ कर लें स्कूल में, क्योंकि बहनों कई बार छोटी छोटी आदतें ही बच्चों की बीमारियों का कारण बनती हैं और बीमारियों से बचाती भी हैं। बहनों माँ की समझदारी सिर्फ स्वादिष्ट खाने बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की भी होती है, तो इन गर्मियों में टिफ़िन में प्यार के साथ स्वाद, साफ सफाई, सावधानी और सेहत का भी विशेष ख्याल रखें और इन सबको शामिल कीजिए, ताकि आपका बच्चा खाना खुशी से खाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खिलखिलाकर इस मौसम का आनंद ले, बिल्कुल इस गीत की तरह।

बिनु इसी खूबसूरत गीत के साथ समय हो गया है आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। तो बहनों, घर संसार कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने साथ बच्चों का परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस समय अपने रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों

के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य सरकार वनाग्नि की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसंख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलीकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए। उधम सिंह नगर जिले के नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से हुए संवाद में उनके भविष्य, शहर की व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों से भी खुलकर अपने सुझाव रखने को कहा। इस अवसर पर महापौर ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को निगम की तरफ से छात्रवृत्ति देने और शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की बात भी कही।
2: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाईस्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया। और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए। तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा, जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और के साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी, अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
0: वहीं छात्रा कशी सिंह ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की।
3: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने। तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार वनाग्नि रोकने के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है। इसके तहत नियमित कार्यबल बढ़ाने के साथ ही व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान, लंबे समय पर सूखा, अनियमित मानसून, अल नीनो समेत अन्य कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। वन मंत्री ने कहा कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान, प्रचार प्रसार और नवाचारों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
5: वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में है और इस पे हमारा विभाग अपने रेगुलर वनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता में

0: फोकस किया और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे उनमें जिलाधिकारी उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपए का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया।
1: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिंडियाल ने बताया कि देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जहां निःशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लोगों और दिव्यांगजनों को अक्सर इलाज, फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र से जुड़े कागजी कामों के लिए समाज कल्याण विभाग और अन्य अस्पतालों के चक्कर काटने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग को चालक सहित इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।
2: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर, और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांगजन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है। ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
1: TSDC इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान में निगम के सभी कार्यालयों, परियोजना स्थलों और इकाइयों में स्वच्छता और सतत विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कॉरपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में कार्यपालक निदेशक नीरज वर्मा ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं ऋषिकेश के जानकी सेतु और त्रिवेणी घाट सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। अभियान के तहत टिहरी, झांसी, खुर्जा और अरुणाचल प्रदेश समेत विभिन्न परियोजना स्थलों पर स्वच्छता अभियान, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं, जन जागरूक रैलियां, कार्यशाला और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। TSDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सिपंग कुमार गर्ग ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण, जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा राज्य सरकार वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं दीवाना एल्बम से, फैज अनवर का नगमा है, आवाज सोनू निगम की।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: ओली जब सुनिए शबीह अब्बास का गीत, गायिका है आशा भोसले।

सुगम संगीत के आखिर में पेश है ज़मीर काज़मी का कलाम, एल्बम है घूंघट आवाज़ पंकज उदास की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है

0: बताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।

0: और एक्स पर भी आप CIIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIIT NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
0: इस

0: कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
2: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
3: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
2: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
3: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
2: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
4: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
4: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
4: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
5: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
1: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती।

0: जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो।

0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
1: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
2: नहीं नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
1: नहीं लेकिन साहब जी,
2: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
1: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
2: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1293। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोक गीत, शुभारंभ कर रहे हैं गोविंद सिंह पंचपाल के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद

0: 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
4: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में

0: कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है फसलों के घरेलू बीज बनाने में सावधानियां। जानकारी दे रहे हैं श्री DS गोसाई।
5: किसान भाइयों, घरेलू स्तर पर बीज बनाने के लिए बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बीज फसल को उगाने के दौरान मिश्रण के सभी संभव स्रोतों और कारकों को यथासमय दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। साथ ही बीज उत्पादन की वे मानक विधियां अपनानी आवश्यक होती हैं जिनमें उत्पादित बीज अच्छी अंकुरण क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाला हो सके। अच्छे बीज में बीज गुणवत्ता के वे सभी गुण विद्यमान रहते हैं जिनसे अच्छी फसल ली जा सकती है। इसलिए बीज फसल में अपनी प्रजातियों में गुणों को बनाए रखने के लिए समय समय पर समसामयिक कृषि कार्य करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। इस समय काश्तकार द्वारा उगाई जा रही बीज फसलों में गेहूँ एवं जौ में बालियाँ निकल रही हैं, मटर मसूर में दाने बन रहे हैं, सरसों एवं तूरिया की फसल पक चुकी है, मूली, प्याज, पालक, धनिया आदि सब्जी वाली फसलों में फूल आ रहे हैं एवं दाने बनने प्रारंभ हो

इन फसलों के अवांछनीय पौधों को निकालना आवश्यक है। बीज फसल में अवांछनीय पौधों को निकालने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अवांछनीय पौधों को जड़ से पूरी तरह निकालना चाहिए। अक्सर लोग केवल ऊपर से तोड़ देते हैं, जड़ नहीं निकालते हैं। इससे अवांछनीय पौधों के दोबारा पनपने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार अवांछनीय पौधों से छुटकारा नहीं मिल पाता है और फसल में समस्या बनी रहती है। साथ ही इन पौधों को इस तरह से निकालें ताकि ये मिश्रण ना हो। यदि आवश्यक हो तो हाथ में कागज़ की थैली ले लें और पौधों को उखाड़कर थैली में डाल दें। रोगग्रस्त शीर्ष भाग को लिफाफे के अंदर की तरफ रखें। इसके बाद इन्हें जला दें और खुले में न फेंकें। इन्हें खुले में छोड़ने पर प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। अवांछनीय पौधे उसी फसल के दूसरी प्रजाति के भी हो सकते हैं या अन्य किसी प्रजाति के हो सकते हैं। किसी प्रजाति के कुछ पौधों में भिन्नता आ जाती है, वे भी बीज फसल से निकाल देने चाहिए। किसी दूसरी फसल या खरपतवार आदि के बीज फसल से निकालने चाहिए। किसी दूसरी फसल आदि पौधे बीज फसल से निकल आते हैं। ये सभी प्रकार के पौधे अवांछनीय पौधे कहलाते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को फूल खिलने से पूर्व बीज फसल से निकाल देना चाहिए। बीज फसल की अनुवांशिक शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि बीज फसल से अवांछनीय पौधों को उचित समय पर निकाल दिया है कि नहीं। बीज उत्पादन के दौरान प्रजनक बीजों की अनुवांशिक शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह बीज बहुत अल्प मात्रा में होता है। यही बीज आगामी पीढ़ियों अर्थात आधार एवं प्रमाणित बीज पैदा करने के मुख्य स्रोत होता है। अतः इनका बीज उत्पादन अत्यंत सावधानी से किया जाता है ताकि आगामी पीढ़ियों में शुद्धता बनी रह सके। बीज फसल में समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। बीज फसल जो बोई गई है उसमें पौधे समान आकार प्रकार व वनस्पतिक वृद्धि एक सी हो रही है या नहीं। यदि कोई पौधा जल्दी बढ़वार कर रहा हो तो कोई बहुत कम बढ़वार कर रहा हो, जो थोड़ा भी भिन्न दिख रहा हो ऐसे पौधों को निकाल देना चाहिए। बीज उत्पादन में फसल एक समान दिखनी चाहिए, किसी प्रकार के अंतर वाले पौधों को निकाल दें। फसल में पुष्पन की अवस्था में निरीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीज फसल में यदि पौधे में पुष्पन अन्य पौधों की तुलना में जल्दी आ गया हो या बहुत देर से आ रहा हो ऐसे पौधों को निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार फसल पकते समय बीज फसल में बालियां या फलियों के रंग रूप परिवर्तनों में भी ध्यान रखकर रोगिंग करना आवश्यक होता है। यदि बीज फसल में कोई पौधा बहुत जल्दी पककर तैयार होता है या कोई पौधा बहुत देरी से पक रहा है ऐसे पौधों के मिश्रण हो सकते हैं। ऐसे पौधों को बीज फसल से निकाल दें। फसल पकते समय बालियों या फलियों के रूप और प्रजाति के गुणों के आधार पर ध्यान में रख के ही छटाई कार्य करना चाहिए। किसी में भी थोड़ा अंतर निरीक्षण करते समय आपको दिख रहा हो तो ऐसे पौधों को कटाई करने से पूर्व अवश्य निकाल दें। पकने की अवस्था में सभी भिन्न प्रकार के पौधे जिनको बालियों या पौधे के अन्य गुणों के आधार पर पहचाना जा सके, जैसे जई जौ चना तथा आपत्तिजनक खरपतवार जैसे हिरनखुरी गुल्ली डंडा चट्टी मट्टी इत्यादि निकाल देने चाहिए। बीज फसल में कटाई का महत्व सर्वोपरि है। इसमें असावधानी बरतने पर बीज फसल एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसलिए फसल कटाई में सावधानी बरतनी आवश्यक है। फसल कटाई का समय वह है जब बीज परिपक्व हो जाए, फसल अपेक्षाकृत पकी हुई दिखती है और उसकी कटाई संभव हो सकती है। परंतु फिर भी इस समय काटने से हानियां होती हैं क्योंकि बीज में नमी की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार फसल बहुत देर से काटने में भी नुकसान होता है, जिससे बीजों की गुणवत्ता में कमी आती है। अतः फसल को उपयुक्त समय पर काटना चाहिए। फसल कटाई का अनुकूल समय वही होता है जब बीज पूरी तरह परिपक्व हो जाए। यद्यपि उस समय बीज में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए बीजों को फसल काटने के बाद धूप में सुखाकर उपयुक्त ढंग से भंडारित करने में हानियां नहीं होती हैं। बीज की कटाई के समय नमी की मात्रा की जांच करना आवश्यक है। किसी भी दशा में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीज फसल की कटाई तभी करनी चाहिए जब प्रमाणीकरण संस्था द्वारा
प्रमाणीकरण की अंतिम रिपोर्ट किसान भाइयों को मिल जाती है। बीज फसल की कटाई मड़ाई का कार्य अन्य फसल से अलग करना चाहिए। किसी भी दशा में प्रमाणीकृत बीज की फसल अन्य खेतों से उत्पादित फसल के साथ नहीं रखना चाहिए। अलग अलग प्रजातियों की फसलों की कटाई का कार्य अलग अलग स्थानों पर करें ताकि किसी किस्म के मिश्रण की संभावना न रहे। बीज फसल को भंडारण करने से पूर्व अच्छी तरह सुखा लें। यदि बीज ठीक तरह से सुखाया न गया हो तो उसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है। बीज भरने वाले बोरों को अच्छी प्रकार साफ करना चाहिए, फिर भंडारण में बीज को उपचारित कर रखना चाहिए। सल्फास की गोलियों को 1.5 घन मीटर की दर से रखना चाहिए। बीज फसल को भंडारण करने से पूर्व नमी की मात्रा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन थैलों या बोरों में बीजों का भंडारण करना है उनमें मालाथियन मिला करके और अच्छे से उनको साफ कर लेना चाहिए। बीज को ऐसे गोदाम में रखना चाहिए जो अच्छी जगह पर हों, जिस पर

0: बीज फसल को भंडारण करने से पूर्व नमी की मात्रा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन थैलों या बोरों में बीजों का भंडारण करना है उनमें मालाथियान मिला करके और अच्छे से उनको साफ कर लेना चाहिए। बीज को ऐसे गोदाम में रखना चाहिए जो अच्छी जगह पर हो, जिस पर कंक्रीट वगैरह, प्लास्टर या कोई सूखी जगह होनी चाहिए जहाँ नमी ना पहुँच सके। बीजों में जितनी कम नमी होगी, भंडारण के समय ठंडी जगह पर भंडारण करने से बीजों को लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है, जिससे अंकुरण क्षमता में कमी नहीं आती है। लंबे समय तक जिन बीजों का भंडारण करना हो उनको कम नमी और ठंडे स्थानों में भंडारण करना चाहिए। भंडारण बहुत साफ होना चाहिए, उसमें जाले वगैरह अनावश्यक चीज़ें ना हों, और बीज के बोरों को लकड़ी की चौखट में जो कि ज़मीन से 6 इंच की ऊँचाई पर हो उनके ऊपर बीज के बोरों को रखें। बीज के एक ढेर से दूसरे ढेर की दूरी कम से कम 0.5 मीटर हो। बीज के बोरों के साथ भूसा इत्यादि नहीं होना चाहिए और प्रत्येक 15 दिन बाद गोदाम का निरीक्षण करना चाहिए। यदि कीड़ों का प्रकोप दिखाई दे तो सल्फात से धूमन करना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति का ढेर अलग अलग होना चाहिए। बीज में भूसा आदि ना हो, जिससे बीज में नमी आने की संभावना रहती है। खेती की निरंतर बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रगति किसानों को तभी लाभ पहुंचा सकती है जब उन्हें बीज पर्याप्त मात्रा में सरलता से उपलब्ध हों। जब किसान को इस तरह के उन्नत बीज मिल पाते हैं तो उनका उत्पादन बढ़ता है। यदि बीज में कमी होती है तो उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, बीजों की आपूर्ति हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित प्रजातियों का बीजोत्पादन करने के लिए गृह में बीज उत्पादन की संभावनाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवादित प्रजातियों का बीज यहाँ की जलवायु में पैदा किया जाए तो इसका बीजोत्पादन अच्छा होगा तथा बाहर से मंगवाने में व्यय होगा वो बच जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसमें सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तथा जमीन उपजाऊ हो, ऐसी भूमि में साधारण अनाज को लेने की स्थानीय लोगों के लिए एक तरह से स्वरोजगार भी यहाँ पैदा किया जा सकता है। बीज सामान्य फसल लेने और बीजोत्पादन वाली फसलों में लेने में उत्पादक को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बीज उत्पादन में अनुवांशिक किस्म की संबंधित शुद्धता बनाए रखने, अन्य बीज गुणों को प्रभावित करने वाले कारणों पर सावधानी की आवश्यकता है। बीज उत्पादन के लिए मानक विधियाँ अपनानी आवश्यक है, जिसमें संपादित बीज अच्छी अंकुरण क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले हों। पर्वतीय क्षेत्रों में जोत की भूमि कम होने के कारण बीज उत्पादन शुरू करने के लिए सभी ग्रामवासियों को, जिनकी जमीन एक साथ मिली हुई है, उन सभी पर बीज उत्पादन के लिए एक साथ एक ही प्रजाति का बीज बोएं। इस प्रकार पर्वतीय कृषक घरेलू स्तर पर बीजोत्पादन कर सकते हैं।
1: फसलों के घरेलू बीज बनाने में सावधानियां, इस विषय पर श्री DS गोसाई से खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज गायिका होंगी विमला रावत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा संपूर्ण शहरी रोजगार योजना। साइंस का संसार और आज का इतिहास भी श्रोता सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें चर्चा सुनिएगा मादक पदार्थों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय योजना। भक्ति संगीत शाम 6:41 पर प्रसारित होगा, आज सुनिएगा जगजीत सिंह और इंदर कुमार के गाए भजन। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें होंगी, पर्वतीय क्षेत्रों में भीड़

पालन से लाभ विषय पर। आज रात्रि 8 बजे लोक गाथा नल दमयंती का 10वां भाग श्रोता सुन सकेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, और रात 10 बजे सुगम संगीत सुनवाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म संगीत रात 10:30 पर श्रोता सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचना आपको दे दें। तहसील कपकोट, थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार दीपक सिंह, पिता का नाम केदार सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट कर्मी, थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर से 10 जनवरी 2026 से ये लापता हैं। इनका हुलिया, इनकी पहचान कुछ इस तरह से है। आयु 24 वर्ष, रंग गोरा है, कद 5 फीट 3 इंच है, पहनावा जीन्स नीले कलर की और जैकेट पहने हैं, आँख कान नाक औसत, बाल काले हैं, हल्की हल्की दाढ़ी और मूछें हैं। 10 जनवरी 2026 को घर में बिना बताए ये कहीं चले गए हैं और लौटकर अभी तक नहीं आए। इनके संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी मिले या कोई सूचना मिले तो इन मोबाइल नंबरों पर आप सूचित कर सकते हैं। थानाध्यक्ष कपकोट का मोबाइल नंबर है 9411113310, 9411113310। इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9927055884, 9927055884। गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचना संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एक ही फनकार और आज के फनकार हैं जाने माने मशहूर पार्श्व गायक जावेद अली। श्रोताओं, दिल्ली में जन्मे जावेद अली अपनी सुरीली मधुर आकर्षक आवाज के जरिए अनगिनत दिलों में राज करते हैं। उनके पिता उस्ताद हामिद हुसैन एक मंझे हुए बेहद प्रसिद्ध जाने माने कव्वाली गायक हैं, तो जाहिर है जावेद अली को विरासत में मिला संगीत और अपने घर पर ही बचपन से उन्होंने संगीत सीखा। जावेद अली का असल नाम जावेद हुसैन है, लेकिन अपने गुरु को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना नाम, अपना सरनेम बदल दिया। जावेद के गुरु का नाम गुलाम अली है, इन्हीं से उन्होंने संगीत की बारीकियाँ सीखी और जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए तो जावेद ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि स्वरूप देते हुए अपना सरनेम हुसैन से बदलकर अली लगाने का फैसला किया और वो बन गए बेहद सुरीले जावेद अली।

सुनो, जावेद अली असल में पार्श्व गायक बिल्कुल बनना नहीं चाहते थे, बल्कि वो गज़ल की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। और हुआ यूं कि गज़ल गायक तो वो नहीं बन पाए, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो मशहूर मेलोडियस सिंगर के रूप में स्थापित हो गए। अपनी फिल्मी दुनिया में गायकी के सफ़र की शुरुआत साल 2000 में प्रदर्शित फिल्म बेटी नंबर वन से उन्होंने की, और पहली बार इसी फिल्म के लिए गाना गाया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन असल पहचान उन्हें मिली फिल्म नकाब के एक गाने से, गाने के बोल एक दिन तेरी राहों में। ये फिल्म साल 2007 में प्रदर्शित हुई, और इस एक गाने ने जावेद अली को रातों रात गायकी का चमकता सितारा बना दिया।

तो सुधों एक दिन तेरी राहों में नकाब फिल्म के इस बेहद सुरीले गाने के बाद जोधा अकबर फिल्म का सुपरहिट गाना कहने को जश्ने बहारा है। जैसे इस खूबसूरत गाने को अपनी बेशकीमती आवाज़ से नवाजा जावेद अली ने और कई गाने उनकी आवाज़ में मुकम्मल हुए हैं, जैसे युवराज फिल्म का गाना, यमला पगला दीवाना, गजनी रॉकस्टार, डेली सिक्स, जब वी मेट, झूठा ही सही, प्रेम का गेम, इशक ज़्यादा, जैसे कई फिल्म हैं जिसमें उनके सुरीले गानों ने धूम मचाई है।

तो शुद्ध एक ही फनकार में आज के फनकार थे जाने माने पार्श्व गायक जावेद अली। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3, लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजु पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का। श्रोताओं, गीत, नगमे, गाने, तराने, कुछ भी कहिए, यानी सभी मिल जाए तो बन जाता है सुरीला संगीत। जिंदगी का सुकून है, आराम है, प्रकृति की स्वच्छंदता का खूबसूरत एहसास है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में उम्मीद की लौ है, किरण है, दिलो दिमाग की ताजगी का मीठा सा तराना है, खूबसूरत सा जिंदगी का हर गाना, यानी सदाबहार फिल्मी गीत आज सजे हैं फिल्मी दुनिया के खूबसूरत गानों से। यूं तो हम रोज ही आपको गाने सुनाते हैं, लेकिन आज चुनकर हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आपको भी सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा और एक मीठा सा एहसास भी। तो पहला गाना प्रेम गीत फिल्म से, इसे स्वर दिया है सुरेश वाडकर ने, इंदिवर के शब्द हैं और जगजीत सिंह ने सुरों में बांधा है।

मेरे हिस्से के रंग को चल तेरे हिस्से के बचे रंग से मिलाते हैं, मेरे हिस्से के रंग को चल तेरे हिस्से के रंग से मिलाते हैं, जो नई रंग बन जाए क्यों ना उनसे एक हसीन ख्वाब सजाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना ज्वेल थी फिल्म का ये सुरीला गाना। शैलेंद्र ने इसे लिखा था और एस डी बर्मन का मधुर संगीत था।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस में मुझको तेरी ही खुशबू आए। क्योंकि

ये थे किशोर कुमार ब्लैकमेल फिल्म में। श्रोताओं, ये खूबसूरत तराने इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सदाबहार फिल्मी गीतों के तहत। और गीत संगीत की बात जब भी हम करते हैं तो हर गीत, हर कोई तराना हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत अफसाना ही होता है। कुछ यूं ही जैसा अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए हम कुछ इस तरह से कहना चाहेंगे, यूं जगा देती है दिल की धड़कन, यूं जगा देती है दिल की धड़कन, उसके कदमों की सदा हो जैसे। कई बार यूं भी देखा है, मुकेश को सुनिए, फिल्म है रजनीगंधा।

किसी के आने से ज़िंदगी में जब आ जाती है बहार, तो कुछ यूं ही कह सकते हैं हम, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। चोरी चोरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज़ें, हजरत जयपुरी का गीत, शंकर जयकिशन का मधुर संगीत।

और अब श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीतों के इस सुरीले सफर का आखिरी गीत हमने लिया है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म है ताजमहल।

जी हाँ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कल सदाबहार फिल्मी गीत में एक बार फिर हमें आना ही पड़ेगा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा

0: के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बिमला रावत का गाया लोकगीत। श्रोता, हमारी इस सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन रहे हैं।

विमला रावत के गाए इसी लोकगीत के साथ शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। संध्या 6:41 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति संगीत। ग्राम जगत कार्यक्रम होगा संध्या 7:00। 7:30 पर आप सुनते हैं कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। आज रात्रि 8:00 सुनिएगा लोक गाथा नल दमयंती का 10वां भाग। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात 6:10 पर आराधना कार्यक्रम के तहत सुनेगा कुछ भजन। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:40, 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस गान पाठ का समय रहेगा प्रातः 7:10, प्रातः 7:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में कल हम आपको सुनाएंगे कमल लाल के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। प्रातः 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे ललित सिंह तुलेरा। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्जर हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर। कल सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर होगा कार्यक्रम सुरबहार। फौजी भाई फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनेंगे सुबह 11:00। 11:30 पर सुनेगा गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अर्पण। कल इस कार्यक्रम में सुनेगा मासिक धर्म जागरूकता विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। 1:30 पर सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1294वीं कड़ी। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण तथा मृदा उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विजय सिंह मीणा।

हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे डोंगर राम, गंगाराम और साथियों का गाया लोकगीत। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5:15 पर। 5:45 पर होगा कार्यक्रम उत्तरायण। कल इस कार्यक्रम में सुनेगा बेजुबान की सेवा ही मानवता विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे शशि पाठक। भक्ति संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:41 पर। 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर आप सुनते हैं कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। किसान भाई किसानवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से भेंट वार्ता। फिल्म संगीत सुनेगा संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे संजय सिंह वर्मा का रूपक टूटी ए हिंद। रात्रि 10 बजे सुनेगा सुगम संगीत। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे युवा साथियों का आपके पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। आज के इस ताज़े अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त भुवन जोशी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में भी रोज़ाना की भांति कुछ जानकारी भरी बातें होंगी और साथ ही होगा आप सभी का मनोरंजन कुछ सुरीले गीतों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात के साथ। और आज की बात मैं हम चर्चा करेंगे कुछ शहरी रोजगार योजनाओं पर। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है जहां नगरीकरण के कारण शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन भी कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार और असंगठित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न शहरी रोजगार योजनाएं भी लागू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कौशल विकास करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। बेरोजगारों के कारण गरीबी, अपराध, असमानता और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के स्थायी अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर ऐसी योजनाओं की आवश्यकता महसूस होती रही है और वे योजनाएं बनाते रहे हैं। तो चलिए आज हम

बात करते हैं कुछ शहरी रोजगार योजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेहरू रोजगार योजना। दोस्तों, नेहरू रोजगार योजना सन 1989 में आरंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देना, छोटे उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना की विशेषताएं थी स्वरोजगार हेतु ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था करना, छोटे व्यापार और कुटीर उद्योगों में को प्रोत्साहन देना, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना। यह योजना शहरी गरीबों के लिए प्रारंभिक रोजगार योजनाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद बारी आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे शिक्षित युवाओं को रोजगार हेतु प्रेरित करना, छोटे उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास करना, बेरोजगारी की समस्या को कम करना। इस योजना के प्रमुख लाभ थे बैंक ऋण की सुविधा, सब्सिडी और प्रशिक्षण, उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। इस योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को छोटे व्यवसाय स्थापित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। फिर बात आती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह योजना सन 1997 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीब लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयड प्रोग्राम और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से शामिल किए गए थे। इस योजना का की प्रमुख विशेषताएं थी गरीब परिवारों को ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराना, कौशल विकास प्रशिक्षण देना, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन करना। यह योजना शहरी गरीब उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना आरंभ हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सन 2013 में प्रारंभ की गई। बाद में इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य थे शहरी गरीबों को और बेरोजगार लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करना, कौशल विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना, शहर में बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना था। इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण व रोजगार, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्ट्रीट वेंडर्स से को समर्थन, शहर में रह रहे बेघर लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। दोस्तों, कुछ अन्य योजनाओं के बारे में हम आपसे और चर्चा करेंगे। पहले आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस गीत को सुनने से पहले हम बात कर रहे थे शहरी रोजगार योजनाओं के बारे में। आइए इसी में अब आगे बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उन्नत रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में गरीब और बेरोजगार लोगों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, कौशल एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को महत्व देना है। इसके अंतर्गत लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा गया, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किए गए और युवाओं को रोजगार योग्य बनाया गया। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। यह योजना विशेष रूप से शहरी युवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हुई भी है। शहरी रोजगार योजनाओं के महत्व की अगर हम बात करें तो इन योजनाओं ने शहरी युवाओं में, महिलाओं में बेरोजगारी की को कम किया है। इन योजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। गरीबी उन्मूलन में यह योजनाएं सफल हुई हैं। गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने में इनसे सहायता मिली है। महिला सशक्तिकरण में इन योजनाओं का विशेष योगदान रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है।

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है और दिया गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है। तो दोस्तों, शहरी रोजगार योजनाओं पर आज की बात में बस इतना ही। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए एक गुमशुदगी की सूचना। पुलिस अधीक्षक जिला बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार दीपक सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट कर्मी थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 24 वर्ष रंग गोरा कद 5 फीट 3 इंच आँख कान नाक औसत बाल काले तथा हल्की दाढ़ी व मूछें हैं जो जीन्स और नीले रंग की जैकेट पहने हुए है तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे ये दिनांक 10 जनवरी 2026 को बिना बताए कहीं चले गए हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इन मोबाइल नंबरों पर सूचित करें। मोबाइल नंबर हैं 9411113310 99270558884। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9411113310 99270558884। सूचना समाप्त हुई। युवाणी कार्यक्रम में आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों लीजिए अब सुनिए विज्ञान जगत से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा जानकारियाँ। कनाडा के एक द्वीप पर शुतुरमुर्ग जैसे दिखने वाले डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म मिला है। CERN के भौतिकविदों ने एक नए विलक्षण कण का अवलोकन किया है। गोलापागोस द्वीप समूह के पास गहरे पानी में ऑक्टोपस की नई प्रजाति की खोज की गई है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि गायें इंसानों के जाने पहचाने चेहरों को पहचान सकती हैं। टी रेक्स मोसासोर ने 80 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्रों पर राज किया था। डायनासोर के विलुप्त होने से पहले प्राचीन आर्कटिक में चूहे जैसे स्तनधारी जीव उत्पन्न होने लगे थे। ये थी विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ ताज़ा जानकारियाँ। अब एक नज़र डालते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर। दोस्तों आज ही के दिन सन 1994 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन पश्चिम में 20 वर्ष का निर्वासन प्राप्त कर स्वदेश लौटे थे। सन 1999 में आज ही के दिन बोत्सवाना की सुंदरी पूले क्वेलागो वर्ष 1999 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। आज ही के दिन 1999 में विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार सोफी पुरस्कार डर्मन हेली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा थॉमस केयरी भारत को प्रदान किया गया था। आज ही के दिन सन 1999 में सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधी घोषित किए गए थे। सन 2000 में आज ही के दिन फिजी में महेंद्र चौधरी सरकार बर्खास्त हुई और राष्ट्रपति मारा ने प्रशासन संभाला था। सन 2002 में आज ही के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री

देवबा को 3 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था। 2005 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया का नाम बदलकर श्वाने करने का निर्णय लिया गया था। सन 2006 में आज ही के दिन इंडोनेशिया में आए विनाशकारी भूकंप में कम से कम 2900 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया था और आज ही के दिन ऑस्कर विजेता निर्देशक सिडनी पोलाक का निधन सन 2008 में हुआ था। सन 2010 में आज ही के दिन भारत में उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।

जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। सन 2011 में आज ही के दिन ग्लोबल इंटरनेट सर्च इंजन गूगल, जो अब भारतीय शहरों की हर गली नुक्कड़ की तस्वीरें इंटरनेट पर दिखाने जा रहा है, गूगल अर्थ के जरिए जहां अब तक आप धरती के विभिन्न हिस्सों की सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते थे, वहीं गूगल के नए फीचर स्ट्रीट व्यू में गली नुक्कड़ तक को भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे हुए कुछ व्यक्तियों के बारे में। आज ही के दिन सन 2003 में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली का जन्म हुआ। सन 1985 में चिराग सेन जाने माने, माफ कीजिएगा, सन 1894 में पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ख्याति प्राप्त आलोचक और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध, उनका जन्म हुआ था। सन 1954 में हेमंत जोशी, हिंदी के कवि, पत्रकार एवं पत्रकारिता के प्रख्यात प्राध्यापक का जन्म हुआ। सन 1957 में आज ही के दिन नितिन गडकरी, भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता का जन्म हुआ। सन 1962 में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ। आज के दिन जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनमें सन 2016 में हंगपन दादा अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जवान सैनिक थे का निधन हुआ। सन 2009 में लोकनाथ मिश्रा, भारतीय राजनीतिज्ञ जो कि अरुणाचल प्रदेश के थे, उनका निधन हुआ। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह बिस्टिंग नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप लोगों का हमारे उत्तरायण कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में शुरुआत करूँ रोजे की चार आप लोगों ने दो चार बातचीत कर भी और कार्यक्रम में बीच में आप लोगों को सुनो कुछ महत्वपूर्ण बातचीत और कुमाऊनी और गढ़वाल लोकगीत। श्रोताओं भारत सरकार द्वारा मादक पदार्थ में कमी लोन और नशे की बढ़ती समस्या रोकने के लिए अनेक राष्ट्रीय योजनाएं और अभियान चलाई गई। यह योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं के नशे की आदतन है बचाओन, समाज में जागरूकता फैलाओं, प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करने से। श्रोताओं नशे केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित न करन बल्कि परिवार समाज और देशिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाल। एक लिए मादक पदार्थन में नियंत्रण आज बखत एक ठूल आवश्यकता बन गया। श्रोताओं भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान भारत अभियान चलाई जा रो। यह अभियान के अंतर्गत स्कूलों कॉलेजों ग्राम सभाओं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम लोगों के जागरूक करी जना युवाओं के नशा के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए और उनके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करी जना। एक दगाड़ नशा छोड़ने वाले लोगों के लिए परामर्श केंद्र पुनर्वास केंद्र और हेल्पलाइन सेवाएं ले उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रोताओं सरकार द्वारा मादक पदार्थों तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून बढ़ाई जा रही। पुलिस नारकोटिक्स विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसी संयुक्त रूपल अवैध नशा कारोबार पर कार्रवाई कर रही। सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी धरी जाने ताकि मादक पदार्थों तस्करी को रोकी जा सको। श्रोताओं मादक पदार्थों में कमी लाना के लिए सरकार दगाड़ दगाड़े सामाजिक भागीदारी ले अत्यंत आवश्यक है। परिवार शिक्षक सामाजिक संगठन और युवा वर्ग मिल भी यह दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। नान नानतिन और युवाओं के खेल शिक्षा योग सांस्कृतिक गतिविधि और रोजगार में जुड़ भी उनके नशिक प्रवृत्ति है दूर करी जा सकूँ। श्रोताओं अंत में कही जा सकूं कि मादक पदार्थों की समस्या केवल सरकारी प्रयासों समाप्त नहीं हो सकें बल्कि यह एक लीजिए पूर्व समाज के जागरूक और जिम्मेदार बनन पड़ो। अगर हम सभी मिल भी नशा मुक्त समाज बढ़ोनक संकल्प लेनो तो आने वाली पीढ़ियों सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करी जा सकूं। तो श्रोताओं यो तो आप लोगों के विचार।

0: श्रोताओं, अल्लाह आप लोगों सुनो दीवान सिंह कनवाल और उनार दगड़वा स्वर में गाई हुई और कुमाऊनी लोकगीत आप कार्यक्रम में अधीन आप लोगों के सुनोनु वन अग्नि रोकथाम विषय पर वन पंचायत खिरोली विकासखंड लमगाड़ जिला अलमाड़ा वन पंचायत सरपंच श्री बची सिंह सांगा दे राजेंद्र सिंह बिस्टेग क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओ, हमार जिंगो हमार जीवन आधार हुनी। गर्मियांग मौसम में आग लगने की जो घटना हुनी वो न केवल हमारे वन संपदा के नुकसान पहुँचानी बल्कि वन्य जीव पर्यावरण और मानव जीवन के लिए ठूल खतरा बन जानी। आज यही संदर्भ में हम नगर क्षेत्र संकलित बातचीत में जुड़ने ही वन पंचायत खिरोली विकास खंड लमगाड़ जिला अलमाड़ा वन पंचायत सरपंच श्री बची सिंह सांगा जी जो हमारे दगाड़ वन अग्नि रोकथाम विषय पर बातचीत कर। तो सांगा जी, स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबने पहले आपू हमारे श्रोतान का अपन परिचय बताते हुए बताला कि आपू सरपंच पद पर कब बटी काम करना है।
2: बीजी, मैं तब श्रोतान के बताऊ कि मैं 2017 नवंबर बटी सरपंच रही हूँ। आई वर्तमान में दोबारा सरपंच नियुक्त करी गयी हूँ जबकि दियो भगत में निर्विरोध सरपंच रही हूँ। जो मेयर अपन जीवन लक्ष्य रहो पर्यावरण प्रति, तो अपन जंगल का कैसी बचाई जाल कैसी कर जाल जंगल प्रति हमेशा बड़ प्रेम रहो लगाव रहो।
1: तो वन पंचायत क्षेत्र कतु एरिया में फैल रहो?
2: मेरे वन पंचायत एरिया से 23.8 हेक्टेयर जमें एल वर्तमान में चिराग संस्था द्वारा मैं काम करू रही हूँ। घर नर्सरी हिसाब उन लोगों हमके गोद लो काम करो हमें वन पंचायत में। अच्छा। पत्र ने जान के उन्हें दिल में रहे हमारे प्रति, तो स्वयं उन्हें फोन आसी हमारे पास की सांगा जी आपको हमन दे जुड़न चाला क्या कर लग। तो फोन माध्यम हम उनका करो महंगा अगर हमारे वन पंचायत का अगर आपको गोद लेना काम करता तो हम बड़ खुशी था। हमारे गांव तुम्हार हमेशा हमारे जो सा आभारी रोल। तो उन लोग आई मीटिंग करी उन घर नर्सरी तौर पर हम कहे हमक वन पंचायत को गोद लेना काम करो। जब की करीब 15-20 जन हम इमें जुड़ रहे हैं तो करीब 25-30 मासू हमारे गाँव छू जमें 15-20 लोग हम जुड़ी हुई था। तो ऐसे अगिलो की सब जानी जुड़ू।
1: अच्छा।
2: इनके देखते हुए महिलाना जो उत्साह से यो अगिलू और ज्यादा हम लोग हम जुड़ा।
1: अच्छा। तो आपू वन पंचायत क्षेत्र में आग लगने घटना हुनी?
2: हमार वन पंचायत एरिया में आग लगने की घटना रहे जय गो जल हम कई बार यो के अग्नि को वन पंचायत आग को रोकना जी जय मेन आग लगने कारण हूँ जो हमारे पहाड़ में चीड़ हूँ। तो चीड़ो जो फल अगर जंगल में आग लगू तो अगर वो 100 मीटर ऊंचाई में अगर से तो अगर वो आग लगो गिरो थे तो 100 मीटर तली गहराई बड़ी आग का पैथ कर। तो ये रोक थामा लीजिए जल वो जल हम जंगल को बचा सकू जो आग में एकदम हम काबू पा सकू। तो इसलिए हम बार बार ये वन विभाग हूँ खाल खंते और ट्रंच ने मांग कर लू जय वो जल खाल खंते और ट्रंच बढ़ना वो जल यो रू की अगर मल्ली बड़ी छू हम पहाड़ में उधर ठीट कही जा तो वो छोटा फल जब गिरू उधर जो ठीट हम गुनू तो ये बॉलर रूप लू ये बॉलर चारों गिरो तो बहुत दूर दूर तक आग का फैले। तो रोक थामा लीजिए तो हम जब ट्रंच मांगनो तो ट्रंच ना यशो कि अगर एक गड्ढे में नहीं रुके दूसर में रुक दूसर में नहीं तीसर में तीसर नील रुक लो चार या पांचों गड्ढे में तब लो रुक जाए जय हो जल आग का हम उनका काबू करना लीजिए समय मिल जाए। तो रोक थामा लीजिए मेन चीज हम यह गुजारिश कर लू की हर वन पंचायत में वो हो।
1: अच्छा। तुम ना जैसे हम खाल खंती और यो रिसार्ज पीटो ये मांग करनो तो तय मांग वन विभाग बटी कर
2: वन विभाग वो लोग करू फिर कहने कहे गाँव सहायता लिवे गाँव बेरोजगार लोगों तो कभी श्रमदान मतलब हम तो तुरंत न काम का करू बकाई जो सस्ता देखे हम जुड़ जाए मीन हमारे सस्ता दुखे जुड़ना काम यो है की उन्होंने हम उनका आश्वासन दे रोके हम सारे तुम्हारे वन पंचायत के तुरंत और उन्होंने बढ़ू। तो हम उनका आशा लगे वो विभाग वाकई में चिराग सस्ता एरिया देखे मैंने उन्होंने जग जग काम देखी तुम्हारा पलना सत्यु यो धौरा बन में जब उन्होंने काम देखो मैंने वाकई में यो सस्ता काम करने आनंद का हम उनके जुड़वे तो हमार जो दिली इच्छा से जो हमारे सपन से तो साकार हो तो यह उधर इनंद का जुड़ी था।
1: अच्छा।
2: तो लगनो की जो हिसाब उन्होंने फर्स्ट में हमारे जल स्रोत में रिचार्ज करना लीजिए जो काम करने शैली धर रखा है चौड़ी पत्तीदार पेड़ नो जो उन्होंने हमारे वृक्षारोपण करवा रखो।
1: अच्छा।
2: ई बात हमारे नौ स्रोतन में नौलन में वो जो काम उन्होंने धर रखी और वर्तमान में एक नौ उन्होंने हमारे बढ़ेला है

0: तो जो हमें पुस्तानी नहल थी जो पानी बिखरी रू थी हमन का कच्चे पोखर बड़े बेर हम इकट्ठा कर चाहे आज उन्होंने एक सौंदीकरण और रूप दिवे ये फर्स्ट क्लास नाव बड़े बेर हम को दिया हलो जय उजल हमें गर्मी में कहीं न कहीं दो चार परिवार को वो नाव बटी पानी मिल जाए अगिलो आज थे कि हमन को और बढ़िया काम कर बैठे और बिना सहयोग के हमने जब हमारे गाँव हमारे परिवार और सहयोग उनको मिल लो तो हमारा सहयोग उनको मिलो शायद हो वो एक बढ़िया काम कर बे हमारे एमडी पांच साल बेटे जाल ये मेरी दिली इच्छा छू।
1: अच्छा कौन मतलब से जो चिराग संस्था से वो वन पंचायत में पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण और आग बुझाने काम कर
0: बहुत बढ़िया काम करने मेरे मानव से दांतों को वन विभाग की अपेक्षा बहुत बढ़िया काम करने बस हमारा सपनो रहो बीजी ऊनी वाव पीढ़ी लीजिए जो आज पानी लीजिए हम लोग एक परेशान था हम तो हमारे पास दस दस किलो पांच पांच किलोमीटर लंबी पानी लाइन से वही बाल हम पानी लीजिए परेशान छू तो हम यो चाहना चौर पत्तीदार पेड़ हमारे लग जो बांझ देवदारों का अगर प्लांटेशन बढ़ जो नव युवक न हमको साथ मिलो तो ऊनी वाव पीढ़ी लीजिए पानी परेशानी नहीं हो और हमारा जल स्रोत विचार जो हो तो मेरा जो मेन सपन से तो छू की मैं ये चाहू की मैं नवयुवक और महिला न साथ मिलो तो मैं एक नए दिन मैं यश किस्मक प्लांटेशन उनके दिखूं कि वाकई में जगह एक बनो रूप बना भी दिखा सकूं पर सहयोग बीजी सबसे मेन है हर एक वन पंचायत न हर सरपंच पंच और उन गांव सदस्यों में एक मैसेज देना कि अकेला तना भार नहीं रोक अगर आदिम को सहयोग मिल लो अगर तल शील्ड में आदिम चौड़ लो अगर उनको द्विशील्ड धकेलते धकेलते अगर भितेर अगर डाल दी जालो बीजी तो भितेर जब केनी के उनको जरूर चाह जा अगर द्विशील्ड को रहो अगर उनको ये खूट पकड़ दे खाओ रगोड़ दी जालो खाओ में केनी मिल चाहे मेरा हर कोई वन पंचायत नू चाहे वो मेरा क्षेत्र में मालता बजेटी बैजिटाना सत्यू रैलाकोट उलशेटी कोई भी वन पंचायत ना हर गाँव पहली लिखी नवयुवक और महिलाओं हर जोर भी निवेदन से कि वो आप अपन सरपंच का सहयोग दियो और आप अपन पेड़ के और उनको बचो अपने गुरु बचा उन बचो काम करो एक पेड़ माँ के नाम सोचबेर अगर हर कोई पेड़ जंगल में पैर है सको
1: बिल्कुल सही बात
0: तो वो जब आदिम करो तब अगर यो सोचो कि ये जंगल सरपंचों से तो हमारे केने तो तब सरपंच भगवती ने पांच सालों केवल चौकीदार अगर वो यो सोलो बीजी कि वाकई में यो जंगल हमारे से सरपंच हमारे मार्गदर्शक से हम उन्हें मिलजुल साथ देने से तो ये मनोबल और बढ़ल जबकि वो पचास पेड़ अगर वन पंचायत में बढ़ो चाहना से सौ पेड़ बड़ा बेर जाल भले होगा पर तन मन धनल भले के लगा
1: बिल्कुल सही बात तो बात कर जंगौन में आग लगने वाली घटना तो जो जंगौन में आजकल आग लगने ते मुख्य कारण क्यों होनी
0: क्या मुख्य कारण बीजी जो कुछ तो हमारे लापरवाही ने जो मेन चीज से चीड़ा पत्ते और जो मैंने अल्लाह तुम उनके जस्ट दो मिनट पहले बताई थी वो चीड़ा फल जब छिंचिर कही जा तो अगर हम एक समय पर अगर अपन वन पंचायत ना चारों ओर श्रमदान करवे अगर वो पिरोल के इकट्ठा करवे अगर गजारन में डाल दू जन्म शीलन से तो उन्हें ये रोकथाम है सके और मीन उनमें तुरंत बढ़ जाओ तो ये रोक है सके और तुरंत बीजी यथुक कोई आदिम सक्षम नहीं जो जंगल में 10 या 15 दिन श्रमदान कर सको हर कोई आदिम गरीब व्यक्ति से रत्ता कमू ब्याह को खान तो हर कोई आदिम तो हम योले नहीं कर सकना तुम श्रमदान करो
1: बिल्कुल तय बार में वन विभाग सोचन चाहिए
0: वन विभाग सोचन चाहिए
1: योजना चलाओ चाहिए तो जो चीड़ों तो ठीड हो तक जल्दी समेटना या खाल खंती बढ़ा दे तक रोकना
0: या रोकना और दूसरा हमारे संज्ञान में आ योजल हम अपन रेंजर साहब नु क्षेत्र अधिकारी जो हमारे उन्नी और हमारे जो मेन हम उनको सचिव मिल लू सचिव माध्यम हम उनको एक हमारे सुन में यो संज्ञान में यो है कि हंस फाउंडेशन चल रहा है तो एक समूह बढ़ू नहीं की बना अग्नि मतलब रोकना लीजिए समूह के आठ दस जाने समूह बढ़ू नहीं की जब क्योंकि आग आगू तो होती एकजुट है फिर जंगल आग को बुझाई जो कभी मैं आग्रह करो थी की भाई मेयर वन पंचायत मतलब ये समूह बढ़वाई जो जो कभी आज तक बीजी कोई सुनाई नहीं है मजबूर मगा स्टूडियो माध्यम कौन पढ़ो मैं अपने सचिव पचास भगत कह है कि यार भाई ये समूह मेद वाले बढ़ो तो उन्होंने ये जवाब मिलो कि उनका भाई एल हम हॉलबाग में बढ़ो ना हम अखिल बगल लमगाड़ में बढ़ो
1: बिल्कुल सही बात करना है कि वन विभाग के लिए आग रोकना जो गांव स्तर पर जो प्रस्ताव जानी उन्होंने ध्यान देना
0: उनमें अमल करना चाहिए उन्होंने ध्यान धरना चाहिए कि आखिर यो कुनी तो किलो कुनी
1: अच्छा जो ज्यादा आग लागो वो मानवीय लापरवाही लागो या प्राकृतिक कारण लग जाए
0: प्राकृतिक कारण तो कम है बीजी ज्यादातर मानवीय जो से लापरवाही और कड़ी उनके हिदायत नहीं देना अगर अपन क्षेत्र अगल बगल हर गाँव नु टाइम पर अगर प्रस्ताव भेजी दो कि भाई यो आग ना अगर तुम्हारे गाँव साइड बेटी जाए गाँव साइड बेटी हमारे वन पंचायत में आग फैलो हम उन्हें ऊपर एक्शन लून यो तो कभी अगर उनके जरा सा डरावनी शब्द प्रस्तावना लीजिए भेजी गयो तो बीजी जरा सा भी बहुत सहायता मिले तो आग लगने संभावना कम रहे।
1: तो जो जंगल में आग लगू वी हमारे वन्य जीव हमारे पर्यावरण में की प्रभाव पड़ो आप हमारे श्रोताओं को बताओ।
0: गजब प्रभाव पड़ो, देखो हमारे सारे जीव जंतु जले सुन पेड़ पौध पक्षी जल छूत तमाम उनर वंश खत्म है जा जल ये तो गर्मी जमीन में की जल स्रोत सूखिया जानी और मानो उमें अभी भी प्रभाव पड़ गया। अगर जल स्रोत में कमी है गया तो जल कमी ऑटोमेटिक है गया
1: बिल्कुल।
0: तो जय जल की तराई मच जाए कब तक तो यश किस्मत घटना है जाए। अगर एक दूसरी बगैर अगर जंगल में आग लग जाते तो पानी की ये तो दिक्कत है जाए की जति जम के पांच घंटा पानी मिलती होती एक अनिस्तर में सलाह करण पड़ जाए। वन्य जीव से देखो हमारे पहाड़ों में कई को की शास्त्र में कई को जबत करे देखो गुरु प्राण हूँ या अन्य कोई कथा वाचन वल्लभ कोई अन्य हम कथा वाचन उमें हम गुरु हमदे यो को नहीं की 84 लाख यूनी जो से भाई हमारी धरती में वास करूँ तो बीजी संभव न 84 लाख यूनी जो से हमारे मतलब यो जंगल छोड़ दे घर में रू जा तो मुश्किल हल यो लगाओ 10 लाख अगर हमारे घर में अगर रूनी गौर बहन मनुष्य बटी अगर 10 लाख अगर हम वन पंचायत के छोड़ दे रू करू तो कहने कहे 74 लाख यूनी जो से वो पंचायतन डिटेल अगर आग लागू तो कहने कहे 74 लाख यूनियन के मतलब कतु फर्क कतु नष्ट हो जाओ बीजे आप खुद अनुमान लगा सकता। तो तय ओजल मैं एक मैसेज दूं लोगों की जो तीर्थ व्रत करनी जो केदारनाथ बद्रीनाथ अगर जानी तो उन्हें लीजिए विशेष तौर पर एक जून में मैसेज की जंगल आग बुझोण बराबर पुण्य काम के नहते और जंगल में आग लगना बराबर पापा काम के नहते।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: अगर जंगल आग बीजी अब बुझू था तुम ये समझ लो तुम लाखों जीव जंतु प्राणी ने जीवन बचा है लो और उन्हें दुआएं जो से तुमको मिले तुम ये समझ लो मैं हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ सब नभेर आ गए। अगर तुम जंगल में आग लोग था या हमने तुम कतुआ तीर्थ कर लो कतु व्रत कर लो तो यह लगा लियो बीजी कहने का तुम नर्ग द्वार में अपन कदम धरे ली जो उत प्राणी ने जीवन को खत्म करी। तो यह उजल में उन्नो यकून की जंगल जतुकला है सको जतुकला प्रयास है सको तो जंगल को बचोने कोशिश राजमल कारण से और ये जंगल हमारे जीवन से वह बटी हम उनका ऑक्सीजन मिले वह बटी हमारा प्राण रही सुन।
1: जो हमारे आज कर लिया जलवायु परिवर्तन होना वही मतलब मुख्य भूमिका है जंगल में आग लग।
0: हाँ मेन जंगल से हमारे जलवायु में से देखो हमन को शुद्ध हवा शुद्ध पानी जो है ये पेड़ न का ओजल मिले उनर ओजल वो हमारे जीवन आधार से जल ही जीवन है। कभी लिख रखो जी पहले कोई ज्ञानी आदि मुंजल जल जल ही जीवन लिख गयो न तेरी वो दूसरा शब्द लिख सकी बीजी।
1: अच्छा सांगा जी अब हमारे श्रोताओं के बताओ की अब क्षेत्र में जब कर ली तो आगे घटना है जे तो ग्रामीणों का सहयोग मिलो आग बुझोण में
0: बीजी मैं अपने युवाओं को बड़ साथ मिलूं अगर मां जाए मैं ये आवाज दूं तो मैं नई युवा जो सन और उनमें है वो कहने का मैं अगर अभेर वो जंगल में आग निमोनो काम कल करनी उल करनी
1: हमारे ग्रामीण लोगों के सबन के सोचते हैं कि जब तक हम मिल भेर ये घटना का न रोकना होते तो हम अपना पर्यावरण लीजिए अपन जैव विविधता लीजिए हम अगिन का काम सही नहीं कर
0: सकते सही नहीं कर सकते बीजी जब जनते हम जति यू ये समझू तब तक हम कब सफल नहीं हो सकते। अगर हम दिमाग में हर कोई व्यक्ति दिमाग में अगर यो चीज आ जाओ कि यो धरोहर हमर क्यों हमारे बहुजी ने बहुत ही अगर आदमी समझ लो तो आदमी कब फेल नहीं हो सकता। और जति वो यो सोच लग की यो एक से मर के थे कब सोल बेजी वो कब अगिल नहीं बढ़ सकन उच्ची उच्ची।
1: अच्छा जब जंगल में आग लग जाए तो रोकथाम लीजिए बुझोना लीजिए आप लोग की प्रयास कर सा
0: वही लीजिए अपन गाँव के लिए सहयोग लेनू और विभाग दाएंगे सहयोग लेनू बीजी।
1: अच्छा
0: हाँ विभाग के लिए सहयोग करनू उद्वेटी अपन सचिव अपन रेंजर डीएफओ जिले से अब उन लोगों फोन करनू तत्काल उन्हीं उन लोग अपन टीम लेवे तो हम उनका सहयोग करनी।
1: अच्छा अच्छा के ग्राम पंचायत स्तर में जागरूकता अभियान चलाई जानी वन विभाग द्वारा या चिराग संस्था द्वारा
0: हमारे यहाँ जतु को जागरूकता को मतलब जो लोग आता उड़ रही तो करी करी तो लगाओ 22-23 में एकाध दि भगत वन विभाग द्वारा एकाध मीटिंग रहे। अच्छा। और चिराग संस्था जो मेरे वहाँ कहने कहे महन में 2 या 3 बैठक इतनी कर भी लोगों को मतलब समझू नी की हाँ अपने सरपंच के साथ दिवेर कसी अगिल का बढ़ी जाए यो कह लीजिए करनी यो तुम्हार लीजिए करनी या आप लीजिए करनी यो कभी रोज संदेश इनके दिनी जय ओझल यो कहने कहे 15-20 लोग मेरे दिखे जोड़ चुक गई अगिल मुका आज से की जो संस्था द्वारा इनके शिकायत ना वी ओझल अगिल मुका लगना की कहने कहे हम 15 चाहते अगिल हम 25 जरूर यो आशा छू।
1: तो जब कोई वन अग्नि घटना है जैसे तुम्हारे वन पंचायत क्षेत्र में तो वही सूचना मिलन पर सबने पहले अब के कदम उठो सा
0: तो सीधे जानो काम करनु पर उदय अब जब अपने का जतुगले उके रोकथाम करी तो उको बुझुनो काम करनु।
1: अच्छा तो तुम्हें वन विभाग का कर्मचारी सूचना दिन वाला।
0: हाँ हाँ उनके

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आप कार्यक्रम में आगे नापू लोग उनको सुनो। एक गढ़वाल लोकगीत जय गायक कलाकार चंद्र सिंह राही।

अर्धतुलकी धार धारी दतुलकी धारी गर्भरी गारी तो छुआरों को इन मुआर अरे खका बदल छुआरो ना अरे तो छुआरों को इन मुआरी भय बंदो हाँ अरे खका आज तो छुआरों को इन मुआर भय बंदो हाँ कि तोल बल रे।

श्रोताओं आलो आप लोगों सुनो चंद्र सिंह राही स्वरन में गाई हुई यह गढ़वे लोकगीत। आप कार्यक्रम में आगिन आप लोग सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा स्वर में गाई हुई यह कुमाऊनी छपेली।

श्रोताओ, प्रहलाद सिंह मेहराक्षर में गई हुई और कुमाऊनी छपेली गीता दगाड़ आज उत्तरायण कार्यक्रम के लिए समाप्त करना बखत हो। भो हूँ आप लोगों के फिर भेंट भेल। आयल में राजेंद्र सिंह बिष्ट का आज्ञा दियो। नमस्कार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को अल्मोड़ा में सम्मानित किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पीएम पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन व अनुसरण समिति की बैठक ली। विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड्स समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के समन्वय के साथ कार्य कर रही है, ताकि विकास की गति भी बनी रहे और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहे।
5: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है, और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्यटक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश भर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से जिलावासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके अलावा श्री जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के लिए घेरवाड़ के लिए घोषित 90 करोड़ रुपए की धनराशि के क्रम में पहली किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए शीघ्र राज्य को उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के तहत कुंभ क्षेत्र को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही हरित हरिद्वार पहल को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में मेला नियंत्रण भवन में इसकी तैयारी को लेकर अभियान के नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि हर व्यक्ति इस अभियान से जुड़ाव महसूस करे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा।
6: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें। इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
4: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन व अनुसरण समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने और इसमें कमियां पाए जाने पर संबंधित जिलों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार किया जाए। बच्चों की स्वास्थ्य की जांच पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया आदि से पीड़ित बच्चों का उपचार सहित लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थान विशेष विश्लेषण भी किया जाए, जिससे यह भी पता चल सके कि किस जिले या किस ब्लॉक के बच्चे के किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ताकि उन क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। बैठक में सचिव रविनाथ रमन ने पीएम पोषण योजना की वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार को प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना और बजट की समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। बागेश्वर के अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वजूला में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का आज शुभारंभ हुआ। पहले दिन छात्र छात्राओं को कुमाऊनी भाषा के ऐसे क्लिष्ट और विलुप्त प्राय शब्दों की जानकारी दी गई जिसका प्रयोग वर्तमान समय में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथ ही हिंदी शब्दों के कुमाऊनी अर्थ और कुमाऊनी शब्दों के हिंदी अर्थों को समझाने की रोचक गतिविधियां कराई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक आर्य ने कहा कि भारत भाषाओं का समृद्ध देश है और विद्यार्थियों को भाषाई विविधता और उसके प्रयोग और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
8: ये बहुत अच्छी पहल है बच्चों के मनोरंजन से संबंधित और भाषा को बृहत रूप में बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए, तो एक बहुत अनूठी पहल है। इसमें बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत खुश हैं, और हमें भी एक मौका मिला है कि बच्चों को एक अलग से उनको ज्ञान देते हुए मनोरंजन के तरीके से और अनेक प्रकार से उनको खेल खेल में भाषा का ज्ञान देते हुए अनेक गतिविधियों से रूबरू कराते हुए इस समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इस 7 दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको कुछ विशेष बनाने की कोशिश जिससे अधिक से अधिक
4: छात्र हरेंद्र ने बताया कि समर कैंप में कुमाऊनी भाषा, लोकगीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बारे में नई जानकारी मिली।
9: हमारे स्कूल में 7 दिनों का कैंप लग रहा है 27 मई से 2 जून तक। उसमें आज पहला दिन था सर, इसमें आज हमने बहुत कुछ चीजें सीखी। कुमाऊनी में अंताक्षरी भी खेली और कुमाऊं में अंताक्षरी खेली और हमें बहुत अच्छी चीजें भी सिखाई गई।
4: पौड़ी जिले में LPG गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन व पूर्ति विभाग द्वारा व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 57 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोटद्वार, दुगड्डा और पौड़ी में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर करीब 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में LPG गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी या प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को अल्मोड़ा में सम्मानित किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पीएम पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और अनुसरण समिति की बैठक ली। विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वैन और अनुसरण समिति की बैठक ली, विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं जगजीत सिंह की, के स्वर में।

इंदर वावरा की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार गढ़वाली में हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अमरेली गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपयों की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र थे पर्यावरण अनुकूल बढ़ान की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू हुणी हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिनूचा। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिला का दिव्यांगों जनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भोल बागेश्वर में द्विदिवसीय बैठक को आयोजन वादों ते भी सुने चालू। अब समाचार विस्तार बटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। ये अवसर पर उन बोली कि यूं योजनाओं से सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सिंचाई नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं थे नई मजबूती मिलली। उन बोली कि प्रदेश सरकारों संकल्प चा कि विकास को लाभ समाज का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचन और पर्वतीय क्षेत्रों में रोण वाला लुखों तय बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। यह उद्देश्य का दगड़ी देश भर में सड़क संपर्क स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं थे तेजी से अग्ने बढ़े जानू चा। मुख्यमंत्री ने बोली कि यूं योजनाओं का पूरा होने से जिलावासियों थे बेहतर सुविधाएं मिलली और क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास थे नई गति मिलली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाला 32 संगठनों व्यक्तियों और समूहों थे सम्मानित कैरी। यहां का बाबत जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों थे शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किए गए। यह अवसर पर मुख्यमंत्री बोली कि सतत विकास केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नीचा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित समृद्ध और संतुलित भविष्य को संकल्प भी चा। उन बोली कि सरकार राज्य प्रदेश में परिस्थितिक और अर्थव्यवस्था का समन्वय का दगड़ी कार्य करनी चा ताकि विकास की गति भी बनी रहे और प्रकृति को संतुलन भी सुरक्षित रहो।
1: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
0: हरिद्वार में अगले साल होने वाली कुंभ मेला की तैयारियों का बाबत कुंभ क्षेत्र थे हरियो भरियों और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करे जाने हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिलन चा। ये कार्यक्रम में मेला नियंत्रण भवन में यहाँ की तैयारियों थे लेकी अभियान का नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करे गई। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों का प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बोली कि प्रशासन की कोशिश चा कि हर व्यक्ति थे ये अभियान से जुड़ाव महसूस करे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाओ। उन बोली कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पौधरोपण करे जालू।
2: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें और इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताज़ा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार।

0: हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल का तहत जिला का दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत करेगी आई। ये कुल लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज कराण का वास्ता बुजुर्गों और दिव्यांगजनों थे मिनुचा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घंडियालन बताई कि देहरादून एकमात्र इन जिला चा जख निशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू करेगी। उन बोली कि उम्र दराज लुखों और दिव्यांगजनों थे अक्सर इलाज फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र से जुड़िया कागजी कामों का वास्ता समाज कल्याण विभाग और अन्य अस्पतालों का चक्कर कटन से दिक्कत होंगी। यहाँ थे देखी कि समाज कल्याण विभाग थे चालक सहित इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करेगी।
2: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर। और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांगजन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है, ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
1: उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भूल, बागेश्वर विकास भवन सभागार में द्विदिवसीय बैठक का वास्ता जनसुनवाई होनी चा। आयोग का अनुसचिव राजेंद्र झिंकवाणा ने ये जानकारी देंदी बगत बताई कि बैठक का दौरान विभिन्न वादों की सुनवाई करे जाली और मानव अधिकार से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करे जालू। आयोग द्वारा संबंधित पक्षकारों और अधिकारियों थे निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रौन का निर्देश दिए गए नहीं, जहाँ से वादों को प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे जा सकू। उधम सिंह नगर जिला का नगर निगम रुद्रपुर का महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त सिप्रा जोशी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करण वाला मेधावी छात्र छात्राओं थे सम्मानित करी। ये दौरान छात्र छात्राओं बटी हुआ संवाद में उनका भविष्य, शहर की व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़िया विषयों पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों भी खुलकर अपना सुझाव रखनी। ये अवसर पर महापौरन आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों थे निगम की तरफ बटी छात्रवृत्ति देन और शैक्षिक भ्रमण पर भेजन की बात भी बोली।
3: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए, तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और के साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
1: उखी छात्रा कशि सिंघन नगर निगम की ये पहल की सराहना कैरी।
4: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने, तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपयों की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र थे पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू होनी हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिलन उचा। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल का तहत जिला का दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भोल, बागेश्वर मां द्विदिवसीय बैठक को आयोजन, वादों ते भी सुने जालू। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुई। नमस्कार।

FM 16.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: श्रोताओं सुनन नगराच्या वीणा तिवारी स्वरमय यो कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम आगिल आपको सुनान लागरिया क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता नव दुर्गा महिला समूहक सदस्य श्रीमती चंद्रकला बिष्ट दगड़ करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता इनर दगड़ बात करने लागरी प्रेम आर्य। नवदुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप में सशक्त बनाने के लिए गठित एक समूह है। आज हमारे साथ श्रीमती चंद्रकला बिष्ट जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जो नवदुर्गा महिला समूह है उसका उद्देश्य क्या है और किस रूप में इसकी स्थापना की गई है। आप इस महिला समूह से जुड़े हुए हैं, तो चंद्रकला बिष्ट जी सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: चंद्रकला बिष्ट जी, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि आपका परिचय क्या है और आप कहाँ रहते हैं, वो कहाँ अभी संचालित है।
1: मेरा नाम चंद्रकला बिष्ट है, मैं न्यू इंदिरा कॉलोनी खतियाड़ी में रहती हूँ। हमारा जो महिलाओं का समूह है नवदुर्गा, उसमें हम 10 सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और एक कोषाध्यक्ष। अभी ये हमारा खतियाड़ी में संचालित हो रखा है। इसमें सभी महिलाएँ अपनी अपनी तरफ से इसमें काम करती हैं। इनको मिला के टोटल 10 सदस्य होते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हमने अपने समूह में 10 ही सदस्य रखे हैं।
0: महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है महिला समूह, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसका गठन आपके द्वारा कब किया गया?
1: इसका गठन हमारा 1 साल पहले हो गया था, जब नवरात्रि स्टार्ट हो रही थी, तो नवरात्रि के टाइम पर हमने अपना ये समूह बनाया। उस समय नवरात्रि चल रही थी और स्टार्ट भी हो चुकी थी, तो सभी महिलाओं ने सोचा कि क्या नाम रखें क्या नाम रखें। तो फिर सबके दिमाग में एकदम से आया कि नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो हम इसको नवदुर्गा नाम से ही इस समूह का नाम रखते हैं।
0: हम जानना चाहेंगे कि जो नवदुर्गा महिला समूह आपके द्वारा बनाया गया हुआ है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, क्या इसके लाभ हैं?
1: इसका मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि महिलाएँ पहले अपने में आर्थिक रूप से सक्षम हो सके और उनको रोजगार भी मिलता है। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं आती हैं, जिसमें वो सिलाई बुनाई बड़ी बनाना ये सब काम करती हैं।
0: कितनी महिलाओं द्वारा अभी ये काम किया जा रहा है आपके संगठन में?
1: अभी हमारे उसमें तो 4-5 ही महिलाएं इस काम को करती हैं, क्योंकि सब इधर उधर।
0: इनकी बैठकें कब आयोजित की जाती हैं, कोई निश्चित समय की अवधि में किया जाता है या अपने सुविधा अनुसार या कोई तिथि आप तय करते हैं?
1: नहीं, इसकी बैठक मासिक बैठक होती है, महीने में एक बार होती है। हर सदस्य के घर में एक बार जरूर नंबर लगता है।
0: जब घरों में आपकी बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो संपूर्ण ब्यौरा आय व्यय का ब्यौरा दर्ज करते हैं, सुनने वाले श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, इसमें हम लोग समूह में पैसा रखते हैं, हर एक सदस्य जैसे 100 रुपये 200 रुपये हर एक सदस्य जमा करता है
0: जी।
1: और उसमें हम जैसे किसी को लोन की जरूरत होती है, किसी को 20,000 रुपये की जरूरत होती है, तो हम उनको 20,000 रुपये जैसे हर एक सदस्य को जिसको जरूरत है उसको देते हैं और ब्याज सहित उससे वापस लेते हैं। और वो जो ब्याज होता है वो सभी महिलाओं को साल में एक बार बांट दिया जाता है।
0: सभी व्यक्तियों को लेना अनिवार्य रूप
1: नहीं, नहीं, जिसको जरूरत होती है वही लोन निकालते हैं।
0: तो ये जो आप ऋण देते हैं, ये ऋण सिर्फ अपने समूह की महिलाओं को देते हैं या फिर अन्य व्यक्तियों को भी दे सकते हैं?
1: नहीं, वैसे तो अन्य को भी देना होता है इसमें, पर हम बाहर वालों को नहीं देते, क्योंकि हमारे पास ही 10 महिलाएं हैं जिनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो बाहर हमने आज तक किसी को नहीं दिया।
0: सरकारी योजनाओं से क्या लाभ मिलता है इस योजना के तहत?
1: बड़ी बनाने का भी आता है इसमें, स्वेटर का आता है इसमें, और ऐपड़ का भी आता है सर इसमें। आता है महिलाएं कितने अपना रोजगार कर सकती, पर आजकल लोगों का जो ध्यान है वो ऐपड़ की तरफ ज़्यादा होगी। इससे पूर्व भी हमारा एक समूह था, वैष्णवी समूह, जिसमें हमने सभी लेडीज़ों ने काफ़ी अच्छा काम करा। वो समूह हमारा लगभग 10 साल तक चला, हम उसको अभी और आगे ले जा रहे थे, फिर उसमें ऐसा हो गया कि हमारी इसमें 3-4 लेडीज़ें इधर उधर बाहर चली गई। सभी लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, बढ़ाए या इसको यहीं पर रोक दिया जाए, तो फिर हमने इस समूह को फिर यहीं पर ही रोक दिया।
0: जहां सरकार भी एक तरफ कह रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरीके की महिला समूहों का आयोजन किया जा रहा है और सरकारी योजनाओं के तहत भी बहुत सारे लाभ सरकार द्वारा दिए जाते हैं, इस समय जब महिलाओं को 4 दीवारियों से बाहर निकल कर एक अपने स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ है, कितना उपयोगी और कितना सशक्त बनाएगा समाज को आगे ले जाने में ये?
1: जैसा कि सभी को मालूम है, सरकार भी महिलाओं को आगे ले जा रही है, हमें भी उसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हम अभी 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में महिला हर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो महिलाओं को हमेशा अपनी तरफ से आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और सभी महिलाओं से मैं ये भी चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, अपना रोजगार करें। कितनी महिलाएं जॉब भी करती हैं, प्राइवेट जॉब भी है, रोजगार अनेक साधन है महिलाओं के लिए। तो आप लोग सभी सक्षम रहिए और अपने रोजगार को चुनिए और उसको आगे बढ़ाइए। वर्तमान में अभी मैं प्रेमात कथक कला केंद्र में हूँ, जिसमें हम छोटे से लेके बड़े बच्चों को सभी को क्लासेस वहाँ पर करवाई जाती हैं। छोटा बच्चा मतलब 3 साल से हमारी अकेडमी में आ जाता है, 3 साल तक का, 30-35 साल तक की लेडीज़ भी आती हैं हमारे वहाँ पर सीखने के लिए। तो उनको हम बॉलीवुड सॉन्ग और जो हमारा कल्चर है देवभूमि, तो पहाड़ी सॉन्ग भी हम बच्चों को करवाते हैं कि बच्चा हमारा पहाड़ से भी जुड़ा रहे, उसको पता हो हमारा कल्चर। तो छोटे बच्चों को हम पहाड़ी डांस भी करते रहते हैं, फोक डांस होता है जैसे, और सेमी क्लासिकल भी करते हैं बच्चे हमारा। कथक तो हमारे बच्चे करते ही हैं।
0: आज निश्चित तौर पर इस विरासत को बचाए रखने का भी हमारे लिए अवसर है। कितना उपयोगी है और कितना आगे आप बच्चों को इस माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं?
1: हमारी एकेडमी का मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जिस चीज़ में रुझान है, जैसे कितने बच्चे सिंगिंग की तरफ को जाते हैं और कितने बच्चे गेम्स की तरफ को जाते हैं और कितने बच्चे नृत्य की तरफ को आते हैं, डांस की तरफ को, तो हम चाहते हैं कि बच्चा भटके ना। यही सिखाया जाता है कि कथक क्या है करके वहाँ पर। और हमको अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की तरफ को ले जाना चाहिए, उनका रुझान उस तरफ को करना चाहिए।
0: आपने हमसे अपने अनुभव साझा किए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता अपसरण नगराच्या क्षेत्र संकलित भेटवार्ता नवदुर्गा महिला समूह सदस्य श्रीमती चंद्रकला बिष्ट गडकरी गई यो क्षेत्र संकलित भेटवार्ता कार्यक्रम आगिल अपकुशणा लागल्या लोकगीत।

श्रोता आप सुनने लग रहा है दीवान कन्वालक स्वर में यह लोकगीत और यही लोकगीतक दगा हमार आज ग्राम जगत कार्यक्रम इन लेकर संपन्न हो आप दगा भो एक नई अंक में फिर भेंट होल आज्ञा दियो नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों अवतगण मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल अलमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग एक संयुक्त पहल भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़बाड़ियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग एक पीठ की तरफ बटी भोल बाक्सर में दो दिनों बैठक का आयोजन वादक ले होली सुनवाई। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज अलमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यो मौके पर उन्होंने कहा कि यो योजनाओं सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सिंचाई नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेल। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारक संकल्प छू कि विकासक लाभ समाजक अंतिम व्यक्ति ताले पहुँच सको और पर्वतीय जगहों में रहने वाले लोगों को भल सुविधाएं उपलब्ध हो सको। यो उद्देश्यक दगर प्रदेश भर में सड़क संपर्क स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी लागिल बढ़ाई जानो। मुख्यमंत्री कह कि यो योजनाओं पुर हुणल जिला वासियों को भल सुविधाएं मिलल और क्षेत्रक सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज अलमाड़ में भई राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करण वाले 32 संगठनों व्यक्तियों और समूहों को सम्मानित करो। यह के अलावा जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करण पर पुरस्कृत करी गयो। यो मौके पर मुख्यमंत्री को कि लगातार विकास खाली वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति ताले सीमित है बल्कि उन वाली पीढ़ियों की सुरक्षित समृद्ध और संतुलित भविष्य संकल्प लछू। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था समन्वय दगर काम करने जैल विकास गति ले बनी रहे और प्राकृतिक संतुलन ले सुरक्षित रोल।
1: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
0: हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के अंतर्गत कुंभ क्षेत्र को हरी भरी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। यही क्रम में म्याल नियंत्रण भवन में यह की तैयारियों को लिवेर अभियानक नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक है। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग ली। मुख्य विकास अधिकारी को कि प्रशासन ने कोशिश छू कि हर व्यक्ति को यो अभियान थे जुड़बेर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाण चें। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगहों में बोट रोपण का काम ले करी जल।
2: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें और इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रही। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकते हैं। यह का दगर न्यूज समाचार।

0: समाचार हमर यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग दगड़े पहलक भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़वाड़ियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई छू। यह लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज करुणक लीजी बुढ़वाड़ियों और दिव्यांगजनों को मिलनो। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल ने बता कि देहरादून एकमात्र यस जिला छू जहाँ निःशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू की गई छू। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लोगों और दिव्यांगजनों को कभे कभे इलाज फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र थे जुड़ी कागजी कामों के लिए समाज कल्याण विभाग और दुहर अस्पतालों चक्कर काटन थे परेशानी का सामना करन पड़छी। यकू ध्यान में राघवीर समाज कल्याण विभाग को चालक दगड़े इलेक्ट्रिक गाड़ी उपलब्ध कराई गई छन।
2: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर। और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांग जन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है। ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
1: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पीठ कोर बटी भूल बक्सर विकास भवन सभागार में दी दिनों बैठक दगर जनसुनवाई ले होली। आयोग अनुसचिव राजेंद्र झिंकवाड़ल यो जानकारी दिविर बता कि बैठक वक्त अलग अलग वादों की सुनवाई की जाल और मानवाधिकार से जुड़ी मामलों में विचार विमर्श करी जाल। आयोग द्वारा जुड़ी पक्षकारों और अधिकारियों को तय तारीख और बखत पर पूजनक निर्देश दी गई छन जैल वादों प्रभावी और बखत पर समाधान तय करी जा सको। उधम सिंह नगर जिला नगर निगम रुद्रपुरा महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशील हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में भल प्रदर्शन करण वाल होशियार नांतिनों को सम्मानित करो। यो बखत नांतिनों थे वही बातचीत में उनर भविष्य शहरक व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़ी विषयों में बात करी गई। विद्यार्थियों ने खुलबेर अपन सुझाव रखी और यु मौक पर महापौरल आर्थिक रूपल कमजोर मेधावी नांतिनों को निगम एक तरफ बटी छात्रवृत्ति दिनक और शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की बात ले कही।
3: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाईस्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया। और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए। तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और के साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
1: वही छात्रा कसी सिंगल नगर निगम में जो पहले प्रशंसालय करी।
4: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने। तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल अलमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास करो। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनोने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग एक संयुक्त पहलक भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़वाड़ियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग एक पीठक और बटी भूल बक्सर में दी दिनों बैठक का आयोजन वादक ले हुई सुनवाई। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:40 में है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज़ दी है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर। रजत अरोड़ा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं दबंग 2 फिल्म से, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ें हैं। इरफान कमाल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं युवराज फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और जावेद अली की। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

युवराज फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक गाथा नल दमयंती का 10वां भाग। कलाकार हैं नारायण राम और साथी।

ભારતીય માથળે સાધુ સરસ બાબુ

0: अयोध्या में जब हिरो के संदेशा भेजसा
1: कृष्ण जो पौना नाम ब्राह्मण थे क्यों कौशी भी अयोध्या में

बाहु कुना मेन पंडा नाम को ब्राह्मण दे यशकोची नायापति काल में जो कुलीन सती पति व्रता नारी हुनी अपन पति व्रता धर्म को रक्षा कनी जो अभागा ऊपर एक वस्त्र ले रहो ऊपर के दोष करण हरत नरे खेलियानी ताशो कागज की पुतली काटी पुतली उड़ी अगास्त

दशकों छ जैग शरीर में एक वस्त्र ले निरयो ऊपर रोग लगोन भाते गलत बात छ रे वो भागा ऊपर के तो तुक रीस ले निकल चैन दमयंती के भरोस है गोत सैतन बाद मेरे पति भी हस को लेकिन रूप देख दे रो तेर मन मानने ना दू तारी को तारो

0: तो धा पानी मांगलो तू देर में वे दिया।
1: पानी मांगलो बहुत देर में दिए।

बैठल है रे बावका के रंग सना। एक खाली घड़ उजाड़ता सो पानी भरी गयो, सूरज उजाण आगो जोशी घाक पुलगा सो आग जल गो सो जल्ले नन्नन द्वार भया ठल है जना। उगली जी ठुले द्वार बन जना, फूलन के हाथल मिन्ना सो जब उम्र धान ले रे और खिल जने। सबकुने यशो पुरुष में जन्मे न देखो, घिवे जो की बाल रणिवास में लौट गए।

बाहू का प्यारा तो झाले रे।

अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा नल दमयंती का 10वां भाग। कलाकार थे नारायण राम और साथी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेंगे साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आईपीएल के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया। एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 27 पदकों के साथ भारत ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन किया। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप कल से वियतनाम के दानांग में, और भारत को मिली एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने न सिर्फ कई कीर्तिमान बनाए बल्कि पदकों पर भी निशाना साधा। म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
1: Isha, can we get one more? Just one more. Oh, nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लामा मिनचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैंप दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लामा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया।
2: I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best.
0: अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यू चंडीगढ़, जहां आईपीएल का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 12 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 5 चौके के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल के एक ही सीजन में 59 छक्के का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने कल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की।
3: धर्मशाला में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। हालांकि टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 25 गेंद में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने पड्डिकल को भी अपना शिकार बनाया। पड्डिकल ने 30 रन का अहम योगदान दिया। आरसीबी ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या के साथ 4th विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 93 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट झटके। 255 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में गुजरात की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम को 17 के स्कोर पर साई सुदर्शन के रूप में पहला झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन महज 14 रन पर हिट विकेट होकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 2 रन ही बना सके और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन जल्द ही जॉश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज ने 68 रन की साझेदारी करते हुए टाइटंस को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। राहुल ने 4 छक्कों के साथ 68 रन बनाए, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। गुजरात की पूरी टीम 3 गेंद शेष रहते 162 रन पर ही सिमट गई। आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रजत ने कहा कि हम शुरू से ही मुकाबले को आक्रामक होकर खेलना चाहते थे।
4: इट वाज अ सुपर गेम फॉर अस, द वे एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग विद द इंटेंट, सो आई थिंक दैट वाज देयर इन एवरी बैट्समैन, सो वी हैड अ चैट इन द मीटिंग एंड या वी हैव टू कीप अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड द अटैकिंग माइंडसेट, द वे वी प्लेड, द वे वी डोमिनेट इन दिस गेम, आई थिंक दैट वाज सुपर। स्टार्टिंग आई टेक सम फ्यू बॉल्स, 8-10 बॉल्स टू सी हाउ द विकेट इज बिहेविंग, व्हाट द बॉलर इज डूइंग, सो आई ट्राई दैट एज मेनी एज बॉल आई प्ले एंड आई ऑलवेज लाइक टू पुट बॉलर अंडर प्रेशर।
3: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी को खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का एक और मौका होगा, क्योंकि गुजरात 29 मई को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम के साथ खेलेगी। अब सीधे रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां एचएस प्रणॉय ने कोर्ट में अपना दमखम दिखाया। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणॉय ने आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी होंगी। एक नज़र आज के खेल प्रदर्शन पर।
5: विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणॉय ने एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी पर 10-21, 21-12, 21-18 से जीत हासिल की। प्रणॉय ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 21-12 से गेम जीता। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 5 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। क्रिस्टी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में यह प्रणॉय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणॉय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लॉ किंग यू से भिड़ेंगे। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी वोंग टीएनसी और लिम च्यू सियन की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराया। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बैडमिंटन से चलते हैं रेसलिंग कोर्ट की ओर, जहां रेसलिंग में कल भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम वियतनाम के दनांग में हुए अंडर-23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी है। भारत कुल 27 पदक के साथ पहले, किर्गिस्तान दूसरे, जबकि कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
6: भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल में ऐतिहासिक जीत के साथ अपने कॉन्टिनेंटल कैंपेन का शानदार अंत किया। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कैटेगरी में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 9 पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। अक्षय टी ढेरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। इस लय को कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने आगे बढ़ाया। दीपक राठी, पुनीत कुमार और लैकी ने बड़ी मेहनत से रजत पदक जीतकर टीम की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया, जबकि दीपक बेरवाल और मोर सचिन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत की महिला पहलवानों ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। महिला टीम ने शानदार 6 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री, पुलकित, मानसी और काजल सभी ने अपने अपने टाइटल मुकाबलों में तकनीकी बेहतरी दिखाई। नेहा और स्वीटी ने रजत पदक जीते, जबकि अमृता और अहिल्या ने कांस्य पदक के साथ अपना कैंप खत्म खत्म किया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारतीय पहलवानों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही 8 मेडल जीतकर एक मजबूत नींव रखी। सुमित 63 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे आगे रहे। सूरज और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। नीरज पटेल, सचिन, रोहित बूरा, रोहित और हरदीप ने कांस्य पदक जीतकर इस शानदार प्रदर्शन में और इजाफा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप उठाना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी कामयाबी।

0: है और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर 23 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अब सबकी निगाहें अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर होंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तीनों स्टाइल में हमारे एथलीटों ने साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब सीधे रेसलिंग से चलते फ्रेंच ओपन की ओर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में शानदार वापसी करते हुए क्लेमेंट टैबूर को हराया। चार बार की चैंपियन इगा स्वैतिक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्वैतिक ने 35वीं रैंकिंग वाली सारा बेजलेक को 6-2, 6-3 से हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त पेलिंडा बेचिच ने कैटी मैकनेली को 6-4, 6-0 से हराकर अगला दौर में प्रवेश किया।
0: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबूर को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुष

0: किया।
1: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबोर को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल है। इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3 सेट में कुल 40 विनर्स लगाए और उन्हें एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया, जब सिनर ने बेहद आसानी से अपने रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया। पहले उन्होंने बेस लाइन के काफी पीछे से एक फोरहैंड स्क्वैश शॉट लगाया और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार बैकहैंड विनर लगा दिया। रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है और ऐसा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस प्रतियोगिता में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें यूकी भांबरी पर होगी, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। जाने माने निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सिंह ने अपने शानदार करियर में 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में उस शख्सियत की बात करने का, जिन्होंने अपने खेल, अपनी सोच और अपनी दमदार आवाज से भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 27 मई 1962 में जन्मे रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में नई ऊंचाइयां दी। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बनकर उन्होंने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
2: That's huge. That is a biggie. It's out of here. This is in the air again. Clears long goal. 3 in a row. It's 4 in a row. 5.
0: स्पोर्ट्स कैन की ओर से रवि शास्त्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

0: अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश वासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की।

है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पिया का घर। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आपकी कसम। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: आपकी कसम फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: चर्चा का विषय है।
2: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का

0: विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहाँ पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहाँ पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेज बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होंगे। ये जो जनसंख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए ये जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया, वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है, उनको

0: जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक पोस्ट डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें। सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख लिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदो

0: और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा, और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल जंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए कितने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, कितनी जमीन आपको देना पड़ेगा, सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
1: जी,
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूँ, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है, जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में, बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लीगेलिटीज अपार्ट, टुडे असमीज इज मार्जिनलाइज इन आवर ओन लैंड, आवर कल्चर

0: marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपीज को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोड, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसंख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम।

0: नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। FM 100.8 MHz और प्रसार भारतीय ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी का कलाम। फनकार हैं बेगम अख्तर।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई ये गज़ल।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई सी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10:30 में हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काजल फिल्म के इस गीत से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए दीवाना फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

FM 16.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए चोर मचाए शोर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

FM 16.8 MHz पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में सफ़र फिल्म का गीत। गीत के बोल इंडिवर के हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: किशोर कुमार के गाए सफ़र फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई

0: दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।